फिर उसको दुरुस्त किया, फिर उसमें अपनी तरफ से रूह फूंकी और तुम्हारे कान और आंखें और दिल बनाए, मगर तुम बहुत कम शुक्र करते हो।

सो अब आग के मजे चखो, इसलिए कि तुमने इस दिन के आने को भुला रखा था। आज हम भी तुम्हें भुला देंगे और जो काम तुम करते थे उनकी सजा में हमेशा के अजाब के मजे चखते रहो।

उसी ने इंसान को ठीकरे की तरह खनखनाती मिट्टी से बनाया और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे।

दोनों दरियाओं से मोती और मूंगे निकलते हैं तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? और जहाज भी उसी के हैं जो दरिया में पहाड़ों की तरह ऊंचे खड़े होते हैं तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे?

फिर जब आसमान फटकर तेल की तिलछट की तरह गुलाबी हो जाएगा तो वो कैसा हौलनाक दिन होगा। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। उस रोज ना तो किसी इंसान से उसके गुनाहों के बारे में पुरसिश की जाएगी और न किसी जिन से। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे।

ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।

आवाज की दुनिया का दोस्त, मालूमातो तफरी का साथी, मेरा आपका हम सबका FM 101 रेडियो पाकिस्तान, कौम की आवाज।

FM 101. A bâlbâlle, çabu çabu.

같은 거.

0: FM ボトムワンワン。
1: आप सुन रहे हैं FM 101 अबलबले जबो जबा।

0: Alright जी, Assalamualaikum everyone. This is DJ Sahil on your FM dial. कैसे हैं आप तमाम लोग? यकीनन ठीक ठाक है, वन एफ टाइम मजे में है, खूब इंजॉय करें अपनी जिंदगी को. It's 8:23 on the dial, ladies and gentlemen. This is DJ Sahil और मेरे साथ मौजूद
1: the one and only, कहते मैं आपको क्या ही बस है,
0: the one and only, the masterpiece.
1: Assalamualaikum listeners, hope you're doing well. This is RJ Rebecca Abdul with the one and only RJ Sahil.
0: बहुत शुक्रिया, थैंक यू. अच्छा, मुझे बड़ा पसंद आया आपने मुझे वन एंड ओनली बोला,
1: क्योंकि देखिए हाँ वन एंड
0: किसी ने बोला नहीं कभी तो मैं ये
1: Listen carefully. You are the one and only. ये वो पीस है जो म्यूजियम में नहीं लगता कि भाई इस जैसा नहीं है, तो या वो बहुत अच्छा होता है, या तो वो बहुत अच्छा पीस होता है, या
0: एक ही था भाई, कोई नहीं रख रहा था इसे.
1: मतलब वो बताया जाता है कि बेटे ये वो चीज है जो दोबारा नहीं आ सकती है.
0: बड़े अफसोस की बात है, कोट के बैठे भी थे ना पूरा हफ्ता, है कितना बर्दाश्त किया होगा, नींद नहीं आ रही होगी, कब आएगा सैटरडे और कब होगा, है ना?
1: देखे इतवार
0: सोमवार. ओह वाओ,
1: ये क्या देखा मैंने,
0: ये बस एक ये वही है जिनकी वीडियोस मैंने आपको भेजी थी कि मुझे देख देख के भाग रहे थे.
1: ऐसे लोग होते हैं.
0: मतलब मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि भैया मुझसे मिलने, आप मुझसे कहें मैं आपको कोई जूस पिलाऊं, चाय पिलाऊं, अच्छा, आप मुझे देख देख के भाग रहे थे कुछ
1: पता है. मैं आपको एक और बात बता रहा हूं, ये ना अपब्रिंगिंग का हिस्सा होता है. ऑन अ लाइटर नोट, मैं बड़ी जो मुझे मैंने बाकायदा, अगर आपके पेरेंट्स, मेरे अम्मी और अब्बू ने हमें, कुछ रिलेटिव्स होते हैं जिनसे बाकायदा तौर पर आपके ताल्लुकात अच्छे नहीं होते, आप ऑफिशियली अनाउंस करते हैं.
0: बिल्कुल,
1: मेरे पेरेंट्स ने एक बात बता दी, बेटा हमारे साथ उनको मसला और हमें उनसे मसला है.
0: आपने इज्जत करना नहीं छोड़नी,
1: आपने उनको जहां देखना है यू हैव टू पे सलाम.
0: बिल्कुल,
1: वो जवाब दें ना दें, आपने उनको सलाम करना है, आपने अपना फर्ज अदा जो
0: बहुत,
1: है वो जरूर.
0: बहुत जबरदस्त बात है.
1: अच्छा, फिर एक और चीज भी, मेरे रिलेटिव्स में ऐसा नहीं है, मेरी एक फुफ्फो है, बड़ी है मेरे वाले साहब से, उनका ना मेरे अब्बा से ऐसा पता नहीं ईंट पत्थर का बैर रहता है, बहन भाइयों का अपना ही है. तो अच्छा, बड़े मजे की मम्मी कहती एक हफ्ता लड़े रहते हैं भैन भरा, एक अगले हफ्ते बोली जाते हैं, सुनते पता नहीं लगता ना लड़ाई. तो बहन भाई उनका अपना तरीका है भाई, हमें नहीं पता माँ अब्बा मेरे और मेरी फूफो कब लड़ी हैं. हम जाते हैं, कभी भी मुलाकात होती है किसी फंक्शन पे, कहीं पे साहिल हम उनको सलाम कर रहे हैं, वो हमें उसी मोहब्बत से प्यार कर रही है. देखिए ये भी तो
0: बड़ी
1: एक तरीका है ना,
0: अच्छी बात है.
1: हाँ, सो जितने भी लोग हैं आप अपने बच्चों को ये बताएं, पता नहीं कैसे लोग हैं जो बच्चों में, मुझे नहीं समझ में आता आप अपने बच्चे को नफरत कैसे सिखा सकते हैं.
0: बिल्कुल ऐसे ही है,
1: मतलब नफरत क्यों सिखाएंगे और कैसे सिखाएंगे, और बड़ा आसान है. देखिए साहिल आएंगे तो उससे सलाम नहीं करना और उसको ज्यादा मुंह नहीं लगाना, समझ रहे हैं?
0: ये आपकी तरबियत बता रही है कि आप क्या कर रहे हैं. अच्छा ये बात मैं आपको बताऊं, आपको पता है कि मेरे थोड़े से हमारे इश्यूज चल रहे हैं, हमने घर शिफ्ट करना है, तो हमारे लैंडलॉर्ड जो है ना उनकी बेटी आई हुई है,
1: गई नहीं अभी तक
0: दुबई से, नहीं आई हुई है, दूसरी बेटी आई है.
1: अच्छा,
0: तो उनकी बेटियां बड़ी प्यारी प्यारी सी दो ना, तो वो मना की बड़ी अच्छी फ्रेंड थी, यहाँ से वो दुबई मैसेज करती थी, मना यहाँ से करती थी, तो ये बड़ा आपस में इनका तो बड़ा बेसब्री से इंतजार था. अब आंटी के साथ अगर हमारी थोड़ी बहुत बात हुई और डन ये हो गया कि ठीक है वी हैव टू मूव, हमें जाना है, और हमें नहीं, आंटी ने बच्चों को पिछले 15 दिनों से 16 दिनों से कैद करके अंदर रखा, वो क्यों आई है पाकिस्तान घूमने फिरने एंजॉय करने, वो बच्चियां नीचे खड़े होकर आवाजें देती रोती रहती लेकिन आने नहीं देती ऊपर, हम हैरान हो रहे थे. अच्छा मेरे बच्चे फिर पूछते हैं मुझसे कि पापा हम ऐसा क्या हो गया है ये, फिर हमने बताते हैं कि बेटा ये नीचे आंटी जो है ना वो उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो थोड़ा सा हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, कर देते हैं, कभी भी हम नहीं बताते. फैमिली में कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, कोई बात हो जाए, हो जाती है 100 चीजें, तो हम अपने सगे बहन भाइयों में कोई मसला हो तो अगर कोई जा नहीं रहा या ऐसी कोई चीज है, बच्चों को आज तक नहीं पता इस बारे में, उनको ये पता है कि अगर हम नहीं जा रहे तो वो लोग यहाँ नहीं है, वो बाहर गए हैं. मतलब हमने ये चीज रखी हुई है कि बच्चों के जहन बुरे हो जाए उनसे, रिश्ते खराब हो उनके लिए, ये बहुत गलत बात है.
1: और यही आप कहते हैं ना, बच्चे को बिठा के सिखाना कुछ नहीं होता, जो आप कर रहे हैं बच्चा वही सीखेगा, एट द एंड वो वैसी ही परवरिश पाएगा. जैसे हमारे घर में भी, तो हमारी जो नना है वो बहुत छोटी है, शी इज जस्ट 21 मंथ्स, 2 साल की भी नहीं हुई. आप सोचिए हमने किसी रिश्तेदार की कोई बात करनी होती है, हम अलग कमरे में जाके बात करते हैं कि नराया के कान में, मतलब उसको पता चल जाएगा कि अच्छा ये नफरत ऐसी, नफरत तो हमें हर किसी से नहीं, अल्लाह माफ करे, कि अच्छा किसी के बारे में बात करना या कुछ बिचिंग हो रही होती है, तो हम कोशिश करते हैं उस बच्ची को पता ना चले.
0: देखिए अगर आपके किसी से कोई ताल्लुकात इस तरह के हैं ना, तो आप जब उन माशाल्लाह उनको जब आप किसी उसमें याद भी करते हैं और अच्छा आगे ताल्लुकात नहीं, तो आपको बहुत अच्छे लफ्जों में याद नहीं करेंगे, तो ऑब्वियसली वो जो अल्फाज आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं उस तरह की जो टॉक घर में हो रही होती है, उससे बच्चों पर बुरा असर पड़ता है. दूर रखना
1: चाहिए, बच्चों को नफरत ना सिखाएं,
0: बिल्कुल
1: उसके पास नहीं जाना. ये लोकल आपने देखा ना, हर मतलब बेशतर घरों में ये हो रहा था, उससे नहीं बात करनी, उससे नहीं मुंह लगाना, उसको दफा करो, सॉरी माजत से, ये लफ्ज इस तरह के अल्फाज जो है मुंह से निकाले जाते हैं, बच्चा क्या सीखेगा।
0: अच्छा बच्चों में ना एक और भी तरबियत बड़ी बच्चों को दी जा रही है कि कहीं भी जाना है तो बेटा जरा तुमने ध्यान रखना कौन क्या बात कर रहा था, ये वो, उधर जाओ नानों के घर जाओ देख के आओ वहाँ क्या बात हो रही थी, भाभी क्या कह रही थी, भाई क्या, मतलब ये वाली चीजें भी जो बच्चों में आप डाल रहे हैं, आप देखिए नन्हे जहनों का क्या काम है। मैं आपको बताता हूँ, मैं अपने इन लॉज में गया, एक फैमिली वहां पे आई हुई थी ना, अब उनका बच्चा पता है क्या करे बैठ के, वो ये करे कि मैं नहीं खाऊंगा, मुझे नहीं खाना, मुझे मामा ने मना किया है, मुझे नहीं खाना है, कोई घर की आपकी चीज नहीं खानी। और मेरा बच्चा ना छोटे छोटे से थे, ये मुझे याद है, 3-3 साल के 3.5 साल के, वो रोहान क्या बच्चे जंपिंग कर रहा और पोएम्स पढ़ रहा और चीजें, उसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं था इन बातों में।
1: wow.
0: क्यों? क्योंकि हमने उसको ये चीज कभी बताई नहीं। और सेम एज का बच्चा जो है वो हमें आगे से ये कह रहा है मामा ने मना किया है, मुझे नहीं खाना, आप लोग गंदे हैं, ये वो। अब ये चीजें जो हैं बच्चों का दिमाग इस हद तक खराब कर देता है कि जब वो थोड़े बड़े होते ना तो उनके लिए क्वेश्चन बन जाता है, क्यूरी बन जाती है माँ बाप के लिए कि जब इतने बुरे थे और मेरे जहन में डाला हुआ तो आज आपके साथ में अच्छे कैसे हो गए, क्योंकि देखिए वक्त हालात एक से नहीं रहते।
1: और बच्चा आपको पता है यहाँ से कंफ्यूज होता है तो नफरत का
0: आगाज होता है
1: ना, जब हम भी कहते हैं ना रिश्तों में कंफ्यूजन आने लगती है तो हम एक दूसरे से हेट करने लगते हैं, क्योंकि हमें पता है ये मेरे मुताबिक नहीं चल रहा, मैं इसके मुताबिक नहीं चल रही, तो वहां से नफरत का आगाज होता है। आपने बच्चे के दिमाग में डाल दिया ये शख्स बुरा है, ये हालात और वाकयात इस सिचुएशन में होंगे तो बुरे हैं, लेकिन जब आप बड़े हैं आप एक दूसरे को दरगुजर कर देते हैं, माफ कर देते हैं, तो फिर बच्चा तो आपसे नफरत करेगा, इसका मतलब आपने उसे गलत चीज
0: सिखाई हुई है।
1: तो खुदा रहा नफरतें भी होती हैं, गुस्सा होता है, झगड़ा होता
0: है, सारी चीजें फॉर टाइम, थोड़ी थोड़ी टाइम के लिए होती है, कोई मतलब ऐसा नहीं है। देखिए हम ईद पे जब शोज करते हैं तो हम नॉर्मली क्या कहते हैं, हम पूरा साल नहीं आपको कहते, हम कहते चलें यार वो लोग जिनसे आपके दिल बुरे हुए थे या कोई खफा थे तो आप उन्हें मना लीजिए, ईद का मौका है, ठीक है। तो ये चीज अगर आप अपनी जिंदगी में वैसे भी कर लेंगे, देखिए अगर कोई शख्स बहुत ही बुरा है ना तो आपकी खामोशी उसको खत्म कर देगी, आप उसको बिल्कुल अपना
1: देखिए बर्दाश्त करना सीखे। मैं भी तो हूँ ना, देखिए 6 महीने से कंबाइन शो कर रही हूँ, बर्दाश्त कर ही रही हूँ।
0: Exactly.
1: तो बर्दाश्त करने में कोई बुरी बात नहीं, अल्लाह खुश होता है, मुझे पता है हफ्ता इतवार जितना मैं बर्दाश्त करती हूँ अल्लाह तो मुझे बहुत राशि
0: है।
1: पता है मेरे घर में काम चल रहा है,
0: कंस्ट्रक्शन मैं भी तो बर्दाश्त कर रहा हूँ,
1: क्या मैं हर हफ्ते बार लाती हूँ, 3 हफ्ते लाई ना, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, मट्टी मट्टी घर
0: के घर में
1: घर के अंदर काम हो रहा है।
0: अच्छा उस पे भी घर चढ़ा रहे
1: हो? चाइना जन से पहले घर चढ़ा के थे, हमारे एक जानने वाले वो आए तो वो कहते हैं अच्छा चाइना से पैसे अथे लगे ना, मेरी अम्मी मेरे अम्मी कहते नहीं चाइना के, तो उसको कुछ पता भी नहीं था जब से मेरी बेटी ने घर सेकंड पोर्शन को जो है वो हमने रेनोवेट किया माशाल्लाह बड़ा प्यारा बना हुआ, मेरे अम्मी कहते चाइना से पैसे आना नहीं मेरी कुड़ी ने उंजी किया।
0: अच्छा तुम्हारा घर प्यारा बना हुआ, ऊपर वाला
1: नीचे वाला पोर्शन भी बहुत खूबसूरत।
0: अच्छा हमें क्या रिबेका, हमें क्या पता,
1: बहुत माशाल्लाह आपको पता है उस एरिया में।
0: अच्छा नहीं नहीं बहरहाल फिर भी हमें क्या पता रिबेका,
1: लोग कहते हैं आपका घर माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत चढ़ा हुआ है। और जब हम कंस्ट्रक्शन कर रहे थे ना 2024 में तो हमें किसी ने कहा जब बन रहा था तो लोग कहते हैं कितने में बेचेंगे बेचेंगे, मैंने कहा नहीं भाई बेचना, अब वो आके कहें और बेटे मैं बाहर जाता हूँ कंस्ट्रक्शन होती है लोग चलते हुए मिल दरवाजे खुले हुए गेट खुले हुए
0: हैं बेचने बना रहे तो बेच
1: कितने में बेचेंगे, अब बकायदा तौर पे मुंह से लोगों ने बताया ये ऑफर्स है। तो अब वो मेरे आके ना फौरन से घर बेचना है, आपका माइंड बने तो बहुत अच्छे पैसे ऑफर हो रहे थे माशाल्लाह, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह।
0: वैसे क्या मतलब गली जो आपकी है उसमें क्या शुरू में कोई मतलब ऐसी रुकावट है कि लोगों को आने नहीं देते अंदर?
1: लोग बिल्कुल आते
0: हैं तो मतलब ऐसा क्या ऑनर हो जाए ये बात आप हमेशा का ये नहीं बुलाती अपने घर, ये चली जाएगी लोगों के घरों में लेकिन ये बुलाएगी नहीं।
1: अरे लोग बुलाते हैं ना मोहब्बत से तो मैं चली जाती हूँ।
0: अच्छा आप ये मोहब्बत क्यों नहीं करती लोगों से?
1: प्रॉब्लम पता है क्या चल रही है आज? नहीं मैं सच्ची बात बता, द प्रॉब्लम इज मेरे ना अम्मा अब्बा का बड़ा प्रॉब्लम रहा है बचपन से,
0: मतलब कोई गाय तो मारते
1: सख्ती करते रहे ना, मेरी अम्मी तो बहुत सख्ती, घर में कोई फ्रेंड नहीं आएगी बच्चों को।
0: अच्छा मेरा तो केस डिफरेंट है ना, आप तो बात
1: नहीं ऐसा, आप तो बात प्यारे
0: हो, ऐसे क्यों है?
1: मेरी अम्मी,
0: अब कल हम आपके घर के बाहर थे ऑलमोस्ट, जिना पार्क के आस पास थे, अम्मी कहते मैंने की यही कहीं रिबेका रहती है, तो वो सारे जो है वो घर वाले पापा चले, मैं हंसा जाऊँ क्या बोलूँ इनको यार।
1: नहीं अब मेरी मैं घर पे भी नहीं थी, ऑफ कोर्स मैं नौकरी पे थी,
0: वो तो
1: मैं गरीब आदमी, जुमा देखिए हफ्ते इतवार लोग छुट्टी करते
0: हैं, अभी 5 साल तक तो यही रहेगा, 5 साल तक तो यही रहेगा कि मैं बोलूंगा कि हमने आना तो आप घर पे नहीं होंगी, उसके बाद फिर एक नई चीज शुरू करेगी,
1: मैं तो मुल्क से बाहर चली क्या कार नहीं बुलाना मुल्क छोड़ देना, तो
0: या अल्लाह मुझे एक मुल्क से बाहर भेज दे, मेरा कोई नहीं इधर, अल्लाह जी पाकिस्तान तक बुला, अल्लाह जी मैंने बाहर काट दो।
1: ये मेरा और साहिल का, खैर मैं साहिल से तो मेरी पूरी फैमिली इनसे बहुत मोहब्बत करती है
0: जी, हमारे घर पे
1: हाँ मेरी अम्मी बहुत प्यार करती हैं, मेरी छोटी बहन साहिल को बहुत प्यार करती है। नराया थोड़ी और बड़ी हो जाएगी, उसे समझ आने लगेगी तो मामू हाय साहिल आप कैसे लगेंगे
0: मामू साहिल भाई
1: नहीं माम अच्छा सोचो आने लिसनर्स इस कहते
0: हैं छोटे बच्चे
1: नराया नहीं कहते नराया मुझे मामू नहीं कहेगी मुझे भाई कहेगी, कहते मैं बूढ़ा बूढ़ा लगूंगा। नहीं आप तो मामू हैं।
0: मैं कहता हूँ आपको तारा लैंडलॉर्ड्स की जो बेटी की बेटियां आई हुई हैं बहुत छोटी छोटी सी हैं, तो एक जो है वो मेरे ख्याल से 7-8 साल की, वो भी इसको भी मैं कहता हूँ बेटा आपने मुझे भाई कहना है, तो मुझे कहती है साहिल भाई
1: अंकल
0: साहिल भाई कहती है, नहीं नहीं साहिल भाई
1: मैं मामू ना, अरे जो मेरे मामू है ना तो वो बड़े यंग है, उनके एक बेटा जो है वो
0: अरे रोहान को आदत पड़ गई थी, रोहान को आदत पड़ गई जहाँ मैं रहता था जब पहले वाले घर में आप आई थी सैदपुर वाली साइड पे, तो उधर जो है पता है लोगों को मतलब सभी को, तो उस घर में सारे बच्चे बच्चे ऊपर नीचे थे वो उनके सबके, तो वो सारे ही ना बड़े सब कहते थे ना ऊपर साहिल भाई उनके बेटे आंटी के, तो वो सारे नीचे उनके छोटे छोटे बच्चे भी साहिल भाई कहते, तो रोहान भी जो खेलते खेलते थे कहता बताओ साहिल भाई को बताओ साहिल भाई उनको डराने के लिए ना आवाजें लगाते थे कि साहिल भाई के नाम से डरेंगे, तो मतलब बच्चों को आदत पड़ी हुई सबको।
1: क्या मेरे मामू जो, मेरे
0: एक्चुअली में मुझे आदत पड़ी हुई
1: भाई भाई सुनने नहीं, मेरे मामू जो हैं अभी आए हुए थे पिछले हफ्ते, तो मैंने कहा क्योंकि मेरा जो नईम जो है वो मेरी खाला का बेटा भी है, तो वो मेरा।
2: आप सुन रहे हैं FM 101। आप सुन रहे हैं FM 101।

0: सुबह के 9 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। आसफा महफूज से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने बैरून मुल्क ज़ेर तालीम पाकिस्तानी तलबा पर जोर दिया है कि वो पाकिस्तान की तरक्की के लिए अपने बैनुल अक़वामी तजर्बे को बरूए कार लाएं। तहफ़्फ़ुज़ खुराक के वजीर ने स्वीडिश कंपनियों को पाकिस्तान के ज़राअत और अफ़ज़ाइश हैवानात के शोबों में सरमायाकारी की दावत दी है। हुकूमत ने आज से आइंदा 3 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल किया है। रात कराची में 19 साल से कम उम्र खवातीन खिलाड़ियों की 5 मैचों की सीरीज के दूसरे T20 में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 47 रन से हरा दिया। और अब खबरों की तफसील।
1: दिस इज FM 101.1
2: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.1।
3: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

0: वेलकम बैक वंस अगेन. आवाज तो नहीं आ रही, वो थोड़ा स्पीकर. हाँ आप ठीक है? ओके, गूंज के आ रही थी बाहर. वो मुझे इतनी हंसी आ रही थी अभी जी, साहिल को यकीन नहीं आया कि मेसी और रोनाल्डो की एज क्या है. और उन्होंने जो है वो सर्च करके देखा और उन्होंने कहा, तो साहिल ने सीधा से जवाब.
1: There's music.

listening to FM 101, Abale Bale Oshawa Shawa.

0: Sucks.
1: And now you are tuned into
2: FM 101.
3: FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: drive carefully, okay?
1: Okay.

0: दिन के 11 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। सोनिया अदनान से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने बैरूनी मुल्क ज़ेरे तालीम पाकिस्तानी तलबा पर जोर दिया है कि वो पाकिस्तान की तरक्की के लिए अपने बैन-उल-अक़वामी तजर्बे को बरोहे-कार लाएं। वज़ीर सेहत ने चीनी सरमायाकारों को पाकिस्तान की दवा साजी और सेहत आमा के शोबों में सरमायाकारी के लिए हुकूमत के मुकम्मल तआवुन का यकीन दिलाया है। हुकूमत ने आज से आइंदा 3 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तब्दीली की है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल कल रात अर्जेंटीना और स्पेन के दरमियान न्यू जर्सी में खेला जाएगा।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.101.
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

FM 101 naal naal sade te naal naal tuade. Kyun ji koi shak hai kya?

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

सुनते रहिए FM 101 101 101।

0: тебе.
1: Cruising on your FM dial. This is 101 FM.

0: News headlines.
1: दिन के 12 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। सोनिया अदनान से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने बैरून मुल्क ज़ेर तालीम पाकिस्तानी तलबा पर जोर दिया है कि वो पाकिस्तान की तरक्की के लिए अपने बैन अल-अक़वामी तजर्बे को बरोहेकार लाएं। वज़ीर सेहत ने चीनी सरमायाकारों को पाकिस्तान की दवासाजी और सेहत आमा के शोबों में सरमायाकारी के लिए हुकूमत के मुकम्मल तआवुन का यकीन दिलाया है। गाज़ा में इसराइली ड्रोन हमले में 8 फलस्तीनी शहीद हो गए हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल कल रात अर्जेंटीना और स्पेन के दरमियान न्यू जर्सी में खेला जाएगा।
2: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। Tune in to the one above, FM 101.
3: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

0: We'll be back.
1: There's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: आपके लिए FM 101 प्ले कर रहा है आपकी पसंद का म्यूजिक।
1: There's music, and then there's magic. One above, FM 101.
2: सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: एक बात बताऊं, मुझे भी FM 101 बहुत पसंद है और मैं बहुत सुनती हूं। आप भी सुनते रहें FM 101।
1: Tune in to One Above FM 101.
2: This is FM 101. This is FM.

0: एक बात बताऊं, मुझे भी FM 101 बहुत पसंद है और मैं बहुत सुनती हूं। आप भी सुनते रहें FM 101।
1: Tune in to One Above FM 101.
2: This is FM 101. This is FM.

This is FM 101. This is FM 101.

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
2: This is FM 101.
3: Shukriya, aapne FM 101 tune kiya.
0: Sunte rahiye FM 101 101 101.
2: This is FM 101.
3: शुक्रिया, आपने
0: एफएम
3: 101 ट्यून किया।
0: सुनते रहिए एफएम 101 101 101।
2: दिस इज एफएम 101।
3: शुक्रिया, आपने एफएम 101 ट्यून किया।
0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
2: दिस इज FM 101 101।
3: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
2: This is FM 101.
3: Shukriya, aapne FM 101 tune kiya.
0: Sunte rahiye FM 101 101 101.
2: This is FM 101.
1: Shukriya, आपने FM 101 ट्यून किया। शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
4: आज हम बयान करेंगे पारा है 20वां, सूरत है अलकसस और आयत नंबर है 25 से 28। औज़ बिल्लाह मिन शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो उन दोनों में से फजात हु एहदाहुमा, तो उन दोनों में से एक उसके पास आई शर्म से चलती हुई, बोली मेरा बाप तुम्हें बुलाता है कि तुम्हें मजदूरी दे उसकी जो तुमने हमारे जानवरों को पानी पिलाया। फलम्मा जा कस्सा अलैहिल कसस, जब मूसा उसके पास आया और उसे बातें कह सुनाई, यानी किसके पास आया, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के पास। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा डरिए नहीं, जो फिरौन के साथ गुजरे थे अपनी वलादत शरीफ से लेकर कप्ती के कत्ल और फिरौनियों के आपके दर पे जान होने तक के सब हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम से बयान किए। तो उन्होंने कहा डरिए नहीं, आप बच गए जालमों से। कालत, उनमें एक बोली एहदाहुमा, यानी उनमें से एक बोली ऐ मेरे बाप इनको नौकर रख लो कि ये हमारी बकरियां चराया करेगा और ये काम हमें नहीं फिर करना पड़ेगा। तो शुएब अलैहिस्सलाम ने साहबजादी से पूछा क्या तुम्हें इनकी कुव्वत अमानत का क्या इलम है। उन्होंने कहा कि अबू जान कि ये कुव्वत तो इससे ज़ाहिर है कि उन्होंने तनहा कुएँ पर से वो पत्थर उठा लिया जिसको 10 से कम आदमी नहीं उठा सकते थे उस पत्थर को, और अमानत इससे ज़ाहिर है कि उन्होंने हमें चेहरा देखा तक नहीं, सर झुका लिया, नज़र ना उठाई और हमसे कहा कि तुम पीछे चलो, ऐसा ना हो कि हवा से तुम्हारा कपड़ा उड़े और बदन का कोई हिस्सा नमूदार हो। ये सुनकर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फिर ये बात कहा कि मैं चाहता हूँ कि अपनी दोनों बेटियों में से एक तुम्हें ब्याह दूँ इस मेहर पे कि तुम 8 बरस मेरी मुलाजमत करो, फिर अगर पूरे 10 साल हाँ कर लो मेरी मुलाजमत तो तुम्हारी तरफ से है और मैं तुम्हें मुशक्कत में डालना नहीं चाहता, करीब है इंशाल्लाह तुम मुझे नेकों में पाओगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये मेरे और आपके दरमियान इकरार हो चुका, मैं इन दोनों में जो मियाद पूरी होगी कर दूँगा, तो मुझ पर कोई मुतालबा नहीं और हमारे کہے پر اللہ کا ذمہ ہے، یعنی اس طرح سے۔ پھر جب آپ کا نکاح ہو چکا 10 سال یا 8 سال خود موسیٰ علیہ السلام نے پوری کی، تو ایک عصا دیا جس سے وہ بکریوں کی نگہبانی کریں، درندوں کو دفع کریں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس انبیاء علیہ السلام کے کئی عصا تھے، صاحبزادی صاحبہ کا ہاتھ حضرت آدم علیہ السلام کے عصا پر پڑا جو آپ جنت سے لائے تھے، اور انبیاء اس کے وارث ہوتے چلے آئے تھے، اور وہ حضرت شعیب علیہ السلام کو پہنچا تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ عصا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام نبی خاتم۔
1: شکریہ، آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا۔
2: دس از ایف ایم 101۔
1: شکریہ، آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا۔
2: دس از ایف ایم 101۔ دس از ایف ایم 101۔
1: شکریہ، آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا۔
5: گیٹ ریڈی فار نان سٹاپ ہٹس، back-to-back English bangers every day from 3 p.m. to 4 p.m. only on FM 101. From the latest chart toppers to the classics you love, we have got your playlist covered. Stay logged in because the best English hits are coming your way right here on FM 101.

सुनते रहिए FM 101 101 101।

शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

सुनते रहिए FM 101 101 101।

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: हैं पंजाब में तैयार के प्रयोग में अहम किरदार अदा कर रहे हैं।
1: सुनते रहिए FM 101 101 101।

वाइब की अलग ही दुनिया में लेके जाने वाले हैं, और ये वाइब आपको हिल हिल के गिरने पे मजबूर कर सकती है। बराए मेहरबानी अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए। किसी भी वाइबी नुकसान के

शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

सुनते रहिए FM 101 101 101।

शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: ऐसी

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: पाकिस्तान है, इमराना नाहिद से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। नायब वज़ीर आज़म और कुवैत के वज़ीर ख़ारिजा ने टेलीफोन पर खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया है। वज़ीर सेहत ने चीनी सरमायाकारों को पाकिस्तान के दवा साजी के शोबे में सरमायाकारी के लिए हुकूमत के मुकम्मल तआवुन का यकीन दिलाया है। कंट्रोल लाइन के दोनों जानेब और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी कल यौम इल्हा के पाकिस्तान मनाएंगे। आलमी कप फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल कल न्यू जर्सी में अर्जेंटाइन और स्पेन के दरमियान खेला जाएगा।
2: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101 101।
3: फॉर लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस आफ्टर एवरी वन आवर ट्यून इन टू FM 101, द चैनल ऑफ रेडियो पाकिस्तान।

0: सुनते रहिए FM 101 101 101।
1: सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

0: This is FM 101. This is FM 101. This is FM 101.
1: Coming up next, 101 News Headlines. News Headlines.
2: रात के 8 बजे हैं, ये रेडियो पाकिस्तान है। खबरनामे के साथ मैं हूँ इमराना नाहिद
3: और मैं हूँ रिजवान हाशमी।
2: पहले अहम खबरों का खुलासा।
3: नायब वजीर आजम और कुवैत के वजीर खारजा ने टेलीफोन पर खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया है।
2: वजीर मनसूबा बंदी ने कहा है कि हुकूमत उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा मौके फराहम करने के लिए पुरअज़्म है।
3: वजीर पेट्रोलियम ने कहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की रोजाना कीमतों के तायुन का तरीक़ेकार मुसाबकती और मार्केट पर मबनी मईशत की तरफ बुनियादी मुंतकली की अक्कासी करता है।
2: वजीर सेहत ने चीनी सरमाकारों को पाकिस्तान के दवा साजी के शोबे में सरमाकारी के लिए हुकूमत के मुकम्मल तआवुन का यकीन दिलाया है।
3: वजीर आला पंजाब ने कहा है कि सूबे भर में नकासी आप के निजाम को बेहतर बनाया जा रहा है।
2: सिंध हुकूमत ने सूबे के निजाम को जदीद बनाने के लिए 550 नई इलेक्ट्रिक और डबल डेकर बसें चलाने का फैसला किया है।
3: खैबर पख्तूनख्वा की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कमेटी ने दीर मोटरवे की तामीर की मंजूरी दे दी है।
2: बलूचिस्तान हुकूमत और धरना कमेटी के दरमियान कामयाब मुज़ाकरात के बाद तहरीरी मुआहदा हो गया है।
3: अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में वज़ीर आज़म प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन ने मुस्तहकम और पायदार शहरी माहौल के क़याम के पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया है।
4: Hey, we'll be back after this short commercial break.
5: Level with zero tuition fee, 100% future, Bhagat International College, Twin Cities top A-level institute, build on discipline, driven by academic excellence. Learn from the best faculty of Islamabad and Rawalpindi. Get merit stipends and financial support. Bhagat International College does not just teach, it builds leaders. Admissions open at Bhagat International College, Gulberg Greens, Islamabad. Call now 0330-511-0099.
0: This is FM
6: 101. Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Bichha, Khairpur, Kohat, Pannu, Abbottabad and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
7: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

jazz music, and then

0: सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: यूं जो तकता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या? कि ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, कि ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता? एक ही शख्स था जहान में क्या,

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: कमर्शियल ब्रेक का।
1: हर्बल एक्सपर्ट प्रोफेसर सुलेमान दे तिब्बी मशवरे। सोने पैन प्रौते मेरे बुजुर्गो, तुहाडी पैन ते इस प्रोग्राम दी मेज़बान साइमा तुहाडी खिदमत विच सलाम पेश करती है। सोने पैन प्रो, मैनू उम्मीद है कि तुसी खूब मजे विच होवोगे ते मैनू उडीक रहे होवोगे कि मैं तुहाडी मुलाकात प्रोफेसर सुलेमान साहब नाल करवावां। पैन प्रो, थोड़ा जिहा सबर करो ते पहला नोट फरमाओ साडा पता ते फोन नंबर, उस तो बाद मैं तुहाडी मुलाकात प्रोफेसर सुलेमान नाल करवावांगी। ते लिखो, सुलेमान दवाखाना रजिस्टर्ड, पुल फ्लाईओवर बिल मुकाबिल मीनारे पाकिस्तान, मेन रावी रोड लाहौर। फोन नंबर 042-377-27160, यानी 042-377-27160। मोबाइल नंबर है 03-400-2608, यानी 03-400-2608। ते साडा ईमेल एड्रेस है suleiman.dawakhana@gmail.com। लो जी भैन भ्राओ, हुण मिलने आ पाकिस्तान दे मशहूर ते बहुत ही सियाने तबीब जनाब प्रोफेसर सुलेमान साहब नाल, जिन्हां नूं एक वारी नहीं बल्कि कई वारी गोल्ड मेडल मिले है। सुलेमान साहब जी, आया नूं खुश आमदीद ते वेलकम।
2: सहमा जी, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया ते थैंक यू वेरी मच।
1: सुलेमान साहब, लाजवाब करन जी, तुहाडा जवाब ही नहीं। ते मैं समझदी हाँ खैरियत दे विच ये कि मैं ईमेल्स ते एसएमएस शुरू कर दिया, नहीं ते तुसी लाजवाब ही करदे रहोगे। सुलेमान साहब, ईमेल भाई तस्नीम कौरी साहब ने लिखी है। ये कहंदे ने कि जनाब सुलेमान साहब, मेरी उम्र 21 साल है ते मैं स्टूडेंट हाँ।
2: अच्छा।
1: सुलेमान साहब, मसला ये वे कि यूरन तो बाद लत्तां विच बहुत दर्द हुंदी है ते लत्तां कंबदियां ने।
2: ठीक।
1: उंज ते कमर विच भी दर्द हुंदा है पर लत्तां दी कमजोरी कुछ ज्यादा है। रात नूं लत्तां आकड़ जांदियां ने ते नींदर भी ठीक तरह नहीं आंदी। मैनूं किसे ने दस्सिया सी कि सिंगाड़े दी खीर बना के खावा।
2: अच्छा।
1: मैं 15 दिन खीर भी खाधी है जिदे नाल कब्ज बहुत हो गई है। सुलेमान साहब, कमजोरी वधदी जा रही है, मेहरबानी करके कोई ऐसी दवाई पार्सल कर दियो कि मेरे जिस्म विच जान आ जावे ते मैं पढ़ाई कर सकवा।
2: बेटा जी, ए आलम तां फिक्रमंद करन वालियां ने, क्योंकि इहो जी बीमारी जदों वध जांदी है ते पट्ठे कमजोर हो जांदे ने ते जिस्म सुकन लग पैंदा है, चेहरे दीआं हड्डियां बाहर नूं आ जांदियां ने। बेटा जी, अलामतां दे मुताबिक तुहानूं यूरिन विच पस आ रही है। सोचण वाली गल इह वे कि तुहानूं इह तकलीफ आखिर किस वजह नाल होई है। बेटा जी, यही वजह जानने लिए जरूरी है कि तुसी किसी दिन आप दवाखाने ते तशरीफ लियाओ ताकि मुकम्मल तशीस तो बाद मैं तुहाडे लई कोई चंगी जी दवाई लिख सकां। तुसी फिक्र ना करो, इंशाल्लाह यह तकलीफ बहुत छेती ठीक हो जाएगी ते तुसी अपने जिस्म विच नवी ताकत महसूस करोगे, क्योंकि साड़ी तिब विच इहदा कामयाब मुकम्मल और मुस्तकिल इलाज मौजूद है।
1: जी बिल्कुल, तुसी बिल्कुल ठीक हो जाओगे। जिते सुनीम भाई, हुण तुहाडी फिक्र मुक गई है क्योंकि रब की मेहरबानी नाल तुसी बिल्कुल ठीक हो जाओगे ते इंशाल्लाह खूब लिखो पढ़ोगे। सुलेमान साहब, अगली ईमेल हाजिर है जिहड़ी मोहम्मद असलम चौधरी साहब ने लिखी है। ये कहंदे ने, जनाब सुलेमान साहब, मेरी

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

समंदर के किनारे पर था और हवा बहुत ठंडी थी। वो हवा थी या मेरी मोहब्बत का कोई गुजरता पहर था जो मुझे नापसंद था। इस बात का जवाब तो मुझे मिला नहीं, क्योंकि कुछ दिनों की ये मुलाकातें

कुछ दिल में रह गया कि अब दिल की सुनूं तो सिर्फ मेरी आवाजें गूंजती हैं। वो जा रही थी और हाले दिल आंखों से बह रहा था। हाले दिल का एक लम्हा मेरी आंखों से होता हुआ मेरे जूते पर जा गिरा। वो जूता आज भी मैं पहनने की हिम्मत नहीं करता। कुछ दिनों की ये मुलाकातें बहुत अच्छी लगी। उससे जो कुछ हो सकी बातें बहुत अच्छी लगी।

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

करती मोहब्बत ना सिला कोई, सितम खुद देखे है खफा कोई, वफा भी करके है बुरा कोई, ऐसा भी करता है भला कोई। छोड़ो ना करता मैं ख्याली बातें, लाता ना रिश्तों में पुरानी बातें, बना इश्क की मिसाल कोई और बना इश्क पे सवाल कोई।

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

Love you, Pakistan.

0: Love you, Pakistan.
1: Pakistan.
0: Love you, Pakistan.
1: Mera sab kuch sajan tujh pe nisaar hai.
0: Love you, Pakistan.
2: radio.gov.pk को एक्सेस करने के बाद आप पाकिस्तान के सबसे बड़े एफएम रेडियो नेटवर्क की लाइव ट्रांसमिशन सुन सकते हैं दोस्तों. इसके अलावा आपके रेडियो सेट्स की शाइनिंग फ्रीक्वेंसी होगी एफएम 101. और एसएमएस करने के लिए आपको बता दें कि 4471 हमारा नंबर है, जहां पे आप अपने मोबाइल के क्रिएट मैसेज ऑप्शन में जाएंगे, 101 लिखेंगे, स्पेस देंगे, अपना नाम, शहर का नाम और बहुत ही खूबसूरत से पैगाम के साथ आप भेजेंगे 4471 पर. इसके अलावा facebook.com/fm101 चैनल पाकिस्तान हमारा ऑफिशियल फैन पेज है, उस पर एक अदद पोस्ट मौजूद होगी, आपने उस पर कमेंट करना है, अपनी फीडबैक का देनी है, अपनी फीडबैक का वहां का जो कमेंट्स होंगे वो इंशाल्लाह प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे. और कोशिश ये कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा उस पोस्ट को आप दोस्तों शेयर कर सकें, ताकि कुछ नए दोस्त भी हमें ज्वाइन कर सकें थ्रू फेसबुक. इसके अलावा लाइव कॉल्स हम शामिल करेंगे, वक्त कब होगा वो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा. 0519202540 पे आपकी लाइव कॉल्स होंगे और 0511100101. तो शाइनिंग फ्रिक्वेंसी दोस्तों 101 होगी. ड्राइव अगर आप इस वक्त कर रहे हैं तो प्लीज़ ध्यान से ड्राइविंग करें. वीकेंड का आगाज़ हो चुका है, बहुत ज़्यादा लोग आजकल ट्रैवल कर रहे हैं नॉर्दर्न एरियाज़ में, चूँकि ये छुट्टियों का वक्त है. सबसे पहले तो वो लोग सामने आए ना, बच्चों की छुट्टियों से बहुत तंग है जी, दुआ कर रहे हैं कब स्कूल की छुट्टियां खत्म हो, किधर एक स्कूल जावन. और ये गाना मैंने तमाम उन पेरेंट्स के लिए लिखा है जिनके बच्चे आजकल छुट्टियों में और घर में हैं, और उन्होंने हाल क्या किया हुआ ये मलकों से ऑप्शन है.

इवन पेरेंट्स के लिए जी आजकल बच्चे, चूंकि आप जानते हैं कि गर्मियों की छुट्टियां घर पे मौजूद हैं और वो जो हाल करते हैं सबका, यकीन जानिए कि पेरेंट्स दुआएं कर रहे हैं कि या अल्लाह कब स्कूल खुलेंगे। आधा मेंटल कर दिया उन्होंने।

12:15 हो चुके हैं दोस्तों, आपके मेरे साथ रहेगा ठीक शब के 2 बजे तक। और इस ट्रैक के दौरान एक वॉइस नोट रिसीव हुआ है जी, थोड़ी देर पहले उन्होंने कॉल भी की थी। FM 101 की बहुत खूबसूरत आवाज़ें आपने दोस्तों सुनी, उनमें से एक सबसे प्यारी आवाज़ माशाल्लाह जो कि काफ़ी अरसे से वो गुम है, चूँकि आप जानते हैं कि कुछ ज़िंदगी की ऐसी मसरूफियात होती हैं कि लोग वक्त नहीं दे सकते, ना सिर्फ इंग्लिश प्रोग्राम बल्कि उर्दू में, उर्दू वैसे भी वॉइस ओवर उनका बहुत अच्छा था लेकिन वो यहाँ से इंग्लिश प्रोग्राम किया करते थे। हबीब मलिक जो उनका नाम है दोस्तों, अगर आप रेगुलर सुनते रहे हैं 101 काफ़ी अरसे से, तो आर जे हबीब मलिक 6 बजे से लेकर 8 बजे तक वो प्रोग्राम करते थे FM प्लानट 94 जो रेडियो पाकिस्तान का फ्रिक्वेंसी थी, वहाँ से उन्होंने आगाज़ किया। फिर 101 उन्होंने बहुत अरसा किया और इस वक्त वो ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब मरी टूवर्ड्स इस्लामाबाद आ रहे हैं, उनके साथ हमारी भाभी भी मौजूद हैं। और हबीब भाई आपका भी बहुत शुक्रिया और भाभी आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने ड्यूरिंग द ड्राइविंग 101 ट्यून किया। और आरजेस चूँकि जैसे कि मैं हॉनर कहता हूँ कि हमारे घर में ज़्यादातर लोग रेडियो नहीं सुनते, मतलब मुझे आज तक घर से कोई फीडबैक नहीं आया। हाँ स्टार्ट में जब प्रोग्राम शुरू किए थे तो एक आधी दफ़ा अम्मी ने कहा कि बस ठीक है पुत्र ठीक कर लेते हो, गाने शाने ना चलाया करो, वैसे निज़ाम ठीक है। उसके बाद कभी ना किसी फैमिली मेम्बर से ना किसी रिलेटिव ने किसी किस्म का फीडबैक दिया। भाभी चूँकि आप हबीब भाई को जानती हैं, हबीब भाई माशाल्लाह बहुत अच्छे वॉइस ओवर, इनका ताल्लुक भी इस फील्ड से रहा और बहुत अच्छी आवाज़ इनकी रेडियो प्रेजेंटर ये रहे हैं। क्या आपने कभी इनको पहले सुना था या अब सुनती हैं? मतलब चूँकि शादी के बाद तो वैसे भी बंदा बहुत ज़्यादा चूँकि बातचीत कम हो जाती है, तो रेडियो में जो है बहुत ज़्यादा इनकी खूबसूरत आवाज़ थी। हबीब भाई आपका भी बहुत शुक्रिया, भाभी आपका भी, आप इस वक्त ड्राइविंग करते हुए सुन रहे हैं। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे नॉर्दर्न एरियाज़ की, बराए मेहरबानी आप सबसे रिक्वेस्ट है, चूँकि एज ए नेशन हमारा ये एक ना फैंटेसी है, मतलब वीकेंड का जुम्मा शुरू होता है, हम जी निकलते हैं मरी की जानेब और आपको पता है कि वहाँ पे पार्किंग का भी बहुत ज़्यादा उस तरह इंतज़ाम नहीं है, आजकल वैसे भी इंक्रोचमेंट का काफ़ी ज़्यादा मामला वहाँ पे चल रहे हैं, तो एक तो वेदर देख के जाया करें, तमाम तरह के एहतियाती तदाबीर, और बराए मेहरबानी जो नॉर्दर्न एरियाज़ में लोग जा रहे हैं प्लीज़ वेदर एडवाइजरी जो कि मेट ऑफिस जो महकमा मौसमियात है उसकी जानिब से जो दी जाती है उस पर लाजमी अमल किया करें, चूँकि बारहा इस तरह देखा जाता है कि वहाँ पर ला जा कर लोग मतलब सैकड़ों की तादाद में गाड़ियाँ जो हैं वो गलत पार्किंग की वजह से, या एक लाइन है जहाँ पर रोड पर 2 लाइन जब बन जाती हैं तो बजाय इसके कि आप इंजॉय करने जाते हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती हैं चीज़ें। और बराए मेहरबानी पानी से हमेशा आपने दूर रहना है, लास्ट ईयर भी काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें जो देखने को मिली थी उससे अवॉइड किया करें, ताकि ये इंसान घूमने फिरने जाता है, साल में एक छुट्टियों का टाइम मिलता है अपनी फैमिली के साथ और वो आप जब स्पेंड करते हैं तो अच्छा टाइम गुजारा करें और अच्छी जगह जाके पुरसकून। मुझे तो मैंने बारहा अपने प्रोग्राम में बताया कि पहाड़ जो हैं बहुत ज़्यादा फैसिनेट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है पहाड़ों पे जाके, और आप भी मुझे बता सकते हैं कि आपको पहाड़ों पे जाके कैसा लगता है। आज का टॉपिक कहीं दरमियान में रह गया, वो आपको बता दूं कि क्या खुशी सिर्फ दौलत से मिलती है, ये हमारा आज का टॉपिक है, इस पे आपने अपनी दिल की बात करनी है, मुझे बताना है। देखिए हर किसी की ज़िंदगी का ना अपना अपना जाविया होता है, जो इस वक्त जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप मौजूद हैं, जिस भी स्टेटस में आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आपकी ये कोशिश है कि आने वाले 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में आपने एक जो मार्जिन है, जो एक गोल सेट किया आपने, वहाँ तक पहुँचना है। अगर आप अभी माशाल्लाह 50,000 लाख 2 लाख रन करने, आपकी कोशिश ये है कि आने वाले 2-3 साल में आप 5 लाख 10 लाख तक जाएँ। हर किसी के खुशी के जाविये डिफरेंट हैं, तो इस पर आज इंशाल्लाह बात करेंगे। 0519202540 0501000

0: 1111 पर हम गपशप करेंगे। गलतियां होती रहती हैं जी, टूटी फूटी आवाज अब तक पहुंचती है, इंसान खता का पुतला है और मुझसे तो बहुत ज्यादा गलतियां होती हैं। मुस्तफा जैद की आवाज को प्रोग्राम में शामिल करेंगे और अब तो पेट्रोल डेली महंगा होगा,
1: तो फिर
0: कभी कभी सस्ता भी होगा। ऐसे किसी दिन हम सवाल ये रखेंगे, आपको याद है कि सबसे सस्ता पेट्रोल आपने कब डलवाया था, अपनी बाइक या अपनी गाड़ी में? अभी भाई आप तो मुझे लाजमी बताइएगा।

जबरदस्त ट्रैक। आज भी जब भी इसको प्ले करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको पसंद आया होगा, और ज्यादातर दोस्त जो हैं वो रिक्वेस्ट करते रहते थे मुस्तफा जायद की ट्रैक की, तो आज हमने इसके प्रोग्राम में शामिल कर दिया। सलमान खान जी हमारे आरजे हैं, बड़ी जबरदस्त और खूबसूरत आवाज, और वो भी कभी कभी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं। तो फौरन से उन्होंने जी आज के टॉपिक के हवाले से कॉमेंट किया है, अदरवाइज वो वैसे टॉपिक पे बहुत कम ही कमेंट करते हैं, लेकिन वो हल्का फुल्का फीडबैक प्रोग्राम के हवाले से लाजमी देते हैं। आज हमारा सबसे पहले जो है दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी अभी ट्यून किया है, आपको बता देते हैं कि आप 101 इस्लामाबाद स्टूडियो से प्रोग्राम सुन रहे हैं। बंदा नाचीज को कहते हैं जी गजनफर महमूद कियानी, 12 बजे से लेकर 2 बजे तक हर हफ्ते की रात मेरा और आपका साथ रहता है। इस दौरान हम मौजूद गुफ्तगू को बहुत मुश्किल या बहुत टफ नहीं लेके आते, बस कोई ऐसी बात करते हैं जिससे आप अपना फीडबैक दे सकें, आप कोई मुस्कुरा सके या कोई अपनी दिल की बात कर सके। तो दोस्तों आज का मौजू ये है कि क्या खुशी जो है वो सिर्फ दौलत से ही मिलती है या इसके कुछ और भी जाविये हैं आपकी नज़र में। प्रोग्राम के एंड पे इंशाल्लाह कुछ दो चार चीज़ें जो हैं मेरी नज़र से गुजरी हैं, जो मेरी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस रहा है वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो सलमान भाई ने पहले जो मेरी बात का कमेंट किया वो मरी से रिलेटेड, जो हम हबीब भाई जैसे कि वो मरी से ट्रैवल कर रहे हैं, और मैंने बात की थी कि लोग वीकेंड जो हैं वो नॉर्दर्न एरियाज़ में जाते हैं, और देखें अब यही कुछ एक्टिविटी है सलमान भाई। अब ये तो इंसान नहीं खेल सकता जो इस्लामाबाद रावलपिंडी के रहने वाले हैं, ये तो माशाल्लाह बहुत बड़ी ब्लेसिंग है अल्लाह ताला की इन पे कि आप हाफ एन आवर में मरी पहुँच जाते हैं। दामने को मारगला हिल्स जो हैं यहाँ पर बहुत खूबसूरत जगह हैं, आप यहाँ पर जा सकते हैं। पंजाब दूर दराज के जो इलाके हैं जहाँ पर पहाड़ नहीं है उनके लिए जो है ये जो खुशी है ये जब वो यहाँ पे आते हैं, आपने अमूमन देखा होगा पंजाब साइड से या सिंध के लोग जब विज़िट करते हैं इस्लामाबाद, मरी, कश्मीर या नॉर्दर्न एरियाज़ का जिसमें स्कर्दू का नाम, तो वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करके जाते हैं। सलमान भाई कहते हैं कि इस कौम की इंजॉयमेंट जो है आपने वर्ड लिखा है खजल ख्वारी, ठीक है जी। और आपने कहा जी ट्रैफिक में फंस जाना, मरी के महंगे खाने खाना, और बाकी जो आपने लिखा है वो सलमान में मैंने फ़िल्टर कर दिए। इस हवाले से ना मैंने काफ़ी दफ़ा अपने प्रोग्राम में ये बात की है और बारहा ये कहा है जी हम जब भी मरी जाते हैं, चूँकि मैं मेरा ताल्लुक कश्मीर जन्नत नज़ीर से है, हम जब यहाँ से निकलते हैं तो अपना पानी, अपनी खाने की चीज़ें, चूँकि ट्रैवलिंग थ्रू मरी होता है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सपेंसिव होती हैं, बारहा मरी के लोग जब कॉल करते हैं तो मैं उनसे पूछता हूँ कि यार क्यों इतनी महंगी चीज़ें होती हैं। लेकिन आपको पता है कि फिर जो इस तरह के प्लेसेस होते हैं जहाँ पे लोग जाके घूमते फिरते हैं, आप नॉर्दर्न एरियाज़ में चले जाएँ वहाँ पे भी आपको खाना महंगा मिलेगा, ये पानी और दीगर जो आप आइटम्स हैं कह लें रिफ़्रेशमेंट की काफ़ी ज़्यादा महंगी मिलती हैं। तो सलमान भाई ये आपको पॉइंट है। दूसरी बात आपने जो दौलत के हवाले से कही कि जी खुशी दौलत से मिलती है, आप खाली जेब से सोएं फिर अगले दिन भरी जेब से सो के देखो खुशी से नींद ही नहीं आएगी, मतलब खाली जेब से आप सो जाएं और भरी जेब से आपको खुशी से नींद नहीं आएगी। बाद में आपने कहा जी ऐसा गाना सुनना है जिसमें लफ्ज़ हसीना आता हो। सलमान भाई अल्लाह ले किड़े पास से टोर पे और छड़ दो इस काम नो अब हसीनाओं का पीछा छोड़ दें सलमान भाई

SMS करने के लिए जी अपने मोबाइल की क्रिएट मैसेज ऑप्शन में जाएंगे, 101 लिखेंगे, स्पेस देंगे अपना नाम, शहर का नाम और बहुत ही खूबसूरत से पैगाम के साथ भेजेंगे 44 71 4 71 पर। सलमान भाई, इसका छोटा सा जवाब ये है कि एक गांव में एक बहुत अमीर शख्स रहता है और वो रोज़ाना रात को ना कुछ टैबलेट्स जो उसको सेहत के मसाइल होते हैं ना वो खा के सोता है, अच्छी चीज़ें भी नहीं खा सकता। और उसी गांव में ना एक बहुत दिहाड़ीदार गरीब मजदूर रहता है, वो बड़े सुकून से जाके बच्चों के पास आराम सुकून से नींद सोता है। तो वो अमीर शख्स उससे पूछता है, यार मतलब क्या, ना तेरे पास गाड़ी है, ना अच्छा तेरे पास घर है, ना कुछ हो रहा है, क्या मामला है, मतलब सुकून से कैसे खुश कैसे रह लेते यार, मैं मुझे ये प्रॉब्लम है, बीपी इशू है, शुगर की बीमारी है, ये मसाइल है। तो वो उसको ये कहता है कि अल्लाह ने मुझे जो दिया है मैं इस पे शुक्र करता हूँ और इस वजह से मैं सुकून की नींद सोता हूँ। बात बिल्कुल ऐसे फिट नहीं करनी दोस्तों आपने, कि मतलब जो अमीर लोग हैं वो शुक्र अदा नहीं करते, ऐसी हरगिज़ बात नहीं है। इसमें मैसेज ये है कि जो अल्लाह पाक ने आपको अता किया उसमें शुक्र अदा करना चाहिए और अल्लाह ताला की ज़ात और भी आपको नवाजेगी अगर आप शुक्र अदा करते हैं। और सुकून मेरे ख्याल से एक ही चीज़ में है जो मेरे नॉलेज में अब तक ये बात समझ आई है कि जो चीज़ आपके पास है हाल में, प्रेजेंट में, जो इस वक्त या मेरे पास ये मोबाइल फ़ोन है, बाइक है, गाड़ी है, या इस तरह की कोई चीज़ है, फैमिली है, वाइफ है, बच्चे हैं, अच्छी जॉब है, या ऐसी जॉब जो आपको 2-3 वक्त की रोटी दे, तो अगर आप इसमें अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हैं और खुश रहते हैं तो मेरे ख्याल से अल्लाह ताला की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। सबसे बड़ी बात हमेशा मैं अपने प्रोग्राम में कहता हूँ कि सेहत से बड़ी नेमत मेरे ख्याल से दुनिया में कोई नहीं है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे आपके सर में दर्द हो जाए ना तो सुने और रात नहीं गुजरती, फिर आपको पता चलता है, या खुदा ना ख्वास्ता, अल्लाह ना करे कि आपको हॉस्पिटल में रहना पड़ जाए ना, तो वो रात नहीं गुजरती और आप जब घर में बिस्तर पे सोते हैं उस रात का आपको पता ही नहीं चलता कि कब सुबह होगी। 12:30 हुआ चाहते हैं, मुझे कहते हैं गजनफर महमूद क्यानी, आपको क्या कहते हैं जरूर बताइएगा। लाहौर, कराची, फैसलाबाद, सियालकोट, हैदराबाद, पेशावर, मुल्तान और पूरा पाकिस्तान, जहां जहां मेरी बात सुनी जा रही है, आप सबको कहते हैं कभी एसवी लिया करो।

चैनल जी facebook.com/fm101 चैनल पाकिस्तान पे। दोस्तों आपके कुछ कमेंट्स हम तक पहुंचे उनको प्रोग्राम में शामिल करेंगे। इसके अलावा जो नंबर है वो आपको बताएंगे, लेकिन कॉल्स अभी शामिल नहीं करने हमने प्रोग्राम में। सलमान भाई बहुत शुक्रिया, आप कह रहे हैं जी कहानियां ना सुनाएं क्यानी साहब, ये बड़ी पुरानी हो चुकी हैं और इन्हीं को सुन सुन के ना आपने बहुत शुक्रिया। बाकी आपने तो लिखा है कि सुकून सिर्फ ठीक है सलमान भाई, बहुत शुक्रिया आपका। दोस्तों facebook.com/fm101 चैनल पाकिस्तान पे आपके जो पैगामात कुछ हम तक पहुँचे हैं उनको हम शल साथ साथ प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और उसके अलावा फिर आपके जो 4471 पे मैसेजेस हैं, चूँकि वन वे ट्रांसमिशन नहीं है, आप जानते हैं कि जो फीडबैक आपका होता है, जो आप कहना चाहते हैं, लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है बराए मेहरबानी जो प्रोग्राम का फॉर्मेट होता है उसको प्लीज़ फॉलो किया करें ताकि उससे रिलेटेड फीडबैक आए और अच्छी जो है वो इंडक्शन हो जाती है, कुछ नई चीज़ें ऐड होती हैं, हर किसी का डिफरेंट माइंड होता है, वो अलग तरीके से चीज़ों को सोचता है। आयशा खान हमारे साथ मौजूद हैं और ठीक है जी, आपने लास्ट सैटरडे का शो क्यों नहीं किया? मैं कश्मीर गया था, इस वजह से नहीं कर सका था। और नेक्स्ट जो सैटरडे का शो है दोस्तों वो भी नहीं कर पाऊँगा, कश्मीर जाना है किसी रीज़न की वजह से। बख्तावर क्यानी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। फजल महमूद हमारे साथ मौजूद हैं, आपका बहुत शुक्रिया। माज अली मौजूद हैं, क्यानी साहब उम्मीद करता हूँ ठीक हो गया, उम्मीद खुश आमदीद आपने कहा, थैंक यू। फैसल अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, दिनिश नवाज मलिक आपका बहुत शुक्रिया, आप 101 सियालकोट की टीम का बहुत अहम हिस्सा हैं जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने इस वक्त फीडबैक दिया। हमारे पास 4471 के भी कुछ दोस्तों मैसेजेस आए हैं, उनको भी इंशाल्लाह हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे, चूँकि वो बहुत हमारे लिए कीमती हैं, चूँकि काफ़ी ज़्यादा इनके पैसे भी खर्च होते हैं और टाइप करना ऑब्वियसली जब आप फेसबुक पे करते हैं तब भी टाइप करते हैं, लेकिन ये हमारे लिए आप तमाम दोस्तों हैं बहुत काबिल एहतराम। अस्सलाम वालेकुम भाई, आई एम रुबाब फ्रॉम रावलाकोट आज़ाद कश्मीर। जब इंसान अल्लाह की दी हुई हर चीज़ पर राज़ी रहना सीख जाता है तो खुश रहता है, बाज़ दफ़ा ज़्यादा दौलत आ जाती है तो तब इंसान खुश ना हो पर रिश्तों से अलग हो जाता है, और खुश रहने के लिए आप छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढने, लाइफ इजी हो जाएगी और अल्लाह पाक की ज़ात पे भरोसा रखें। बहुत शुक्रिया रुबाब, कश्मीर से आपने पार्टिसिपेट किया, थैंक यू सो मच। शकील अहमद लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं, क्यानी भाई अल्लाह आपको बहुत शुक्रिया जी दुआओं के लिए, आपका शो अच्छा है, थैंक यू सो मच मेरे भाई। और ब्रदर जब आप कोई ट्रैक प्ले करते हैं तो वॉइस क्वालिटी बहुत मध्यम हो जाती है, प्लीज़ ठीक हो गया सर, अब हम इसको ना मॉनिटर करेंगे कि जब भी कोई गाना प्ले होता है क्यों हमारी आवाज़ जो है वो कम हो जाती है। बराए मेहरबानी दोस्तों इस वक्त अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, वो लोग जो फेसबुक की एक्सेस है उनके पास facebook.com/fm101 चैनल पाकिस्तान, तो आप मुझे ज़रूर कॉमेंट कीजिएगा, इस पोस्ट को आपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। साथ साथ हम ज़बरदस्त म्यूज़िक भी चलाएंगे, ढेर सारी बातें करेंगे। और इस वक्त एक मैसेज आया, आर्यन आपका बहुत शुक्रिया आपने रेडियो ट्यून किया है और आप इस वक्त मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच। ये यकीनन जो है वो दानियाल जो है मेरे कज़न हैं, आज रिसेंटली जी अभी ये भी माशाल्लाह इनकी ज़िंदगी का एक नया सफ़र शुरू हुआ है, और ये भी इनकी भी मैं कहानी किसी दिन सुनाऊंगा। कुछ बच्चे ख़ानदान में ऐसे नहीं होते हैं, मतलब जिनको कहो ना यार तेरा ब्याह कराना है, वो राज़ी नहीं होते, नहीं जी बस करनी नहीं, अभी नहीं करनी, अभी सेट नहीं हो, अभी ये नहीं, अभी वो नहीं। फिर जब इनकी माशाल्लाह जब कहीं दुआ खैर कर दी जाए फिर तो इस तरह फील होता है कि ये तो बिल्कुल तरसे हुए सन, तो चांदे सन के साड़ी करा दें। तो दानियाल जी आपको, आपने एक नई ज़िंदगी शुरू की, अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। जिन दोस्तों की जी रिसेंटली पर आने वाले दिनों में या जो करंट टाइम गुजरा है आप लोगों ने नई ज़िंदगी का आगाज़ किया है, उसका मतलब ये है कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐड हुआ है, मतलब कोई निकाह, कोई मंगनी, कोई रिश्ता, तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो जी। जिन दोस्तों की सालगिरह है आप तमाम दोस्तों को बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो FM 101 के इस प्लेटफॉर्म से मेरी जानिब से। और कल फुटबॉल वर्ल्ड कप कौन जीतेगा दोस्तों, ये भी साथ से बताइएगा। और कल हम इंशाल्लाह बड़ी जबरदस्त ट्रांसमिशन आपके लिए लेकर आएंगे, 12 बजे ट्यून कीजिएगा। मैडम सदफ से हमने अप्रूवल ले लिया, मेरी कोशिश होगी कि आप तमाम दोस्तों की मनपसंद आवाजें जिसमें आरजे जुशान नासिर, हसन रजा, मोहम्मद यूसुफ शाह साहब और कुछ हाउस एड के प्रेजेंटर्स, और मैं कोशिश करूंगा सर अब्दुल वहीद शेख साहब को भी हम इनवाइट करें,
वर्ल्ड कप फाइनल में आपको याद होगा लास्ट ट्रांसमिशन हमने की थी अर्शद नदीम साहब ने जब गोल्ड मेडल हासिल किया था, वो अगस्त का महीना था और उस गोल्ड मेडल पे हमने 14 अगस्त एंजॉय की थी, पूरा महीना एंजॉय किया था।

सलमान भाई स्पेन नहीं, मुझे लगता है कि अर्जेंटीना जीतेगा। चले आपका जो सपोर्ट है वोट है स्पेन के लिए आ गया। वैसे हैरान कुन बात है दोस्तों, कल बैक टू बैक मतलब जुमरात और जुम्मा मेरा हाउस सेट होता है दो दिन स्पोर्ट्स का प्रोग्राम, उसमें ना स्पेन के ज्यादा वोट थे। आप सोशल मीडिया भी जब एक्सप्लोर करते हैं और वहां पर भी स्पेन ने काफी ज्यादा वोट हासिल कर रखे हैं कि स्पेन की टीम वर्ल्ड कप जीतेगी, और अर्जेंटीना के हवाले से लोग ये भी बात कर रहे हैं कि काफी ज्यादा उनको फेवरेट करार दिया जा रहा है और उनको काफी ज्यादा सपोर्ट मिली है रेफरीज की जानिब से। कुछ डिसीजंस आपको याद होगा, वो इजिप्ट वाला मैच जिसमें मोहम्मद सलाह की टीम बाहर हुई थी, तो काफी ज्यादा चीजें हैं। बहरहाल गेम है जी, और डिफेंड कर रही है अर्जेंटीना। आखिरी जो टाइटल था वो इन्होंने जीत रखा है। अर्जेंटीना और स्पेन की दोनों ऐसी टीम्स हैं जिनके पास पहले भी वर्ल्ड कप का एजाज हासिल है, और कल वर्ल्ड कप की तारीख का एक नया चैंपियन सामने आएगा। अब वो कौन होगा, स्पेन या अर्जेंटीना? मेसी की टीम जीतेगी, चूंकि काफ़ी ज़्यादा लोग ये भी बात कर रहे हैं कि शायद मेसी जो है वो सेकंड वर्ल्ड कप भी अपनी टीम को जितवाने में कामयाब। रोनाल्डो के फैंस के लिए ये वर्ल्ड कप अच्छा नहीं था, चूंकि इन दोनों का बल्कि काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े नाम लेकिन पाकिस्तान में और बहुत ज़्यादा हल्के में रोनाल्डो और मेसी को हमेशा इनका मुकाबला, जैसे क्रिकेट की दुनिया में नहीं बाबर आजम और विराट कोहली के दरमियान मुकाबला चलता रहता है, इस तरह इनके कहा जाता था। लेकिन रोनाल्डो की किस्मत में वर्ल्ड कप अपनी टीम के लिए नहीं था। 12:40 आपकी लाइव कॉल्स इंशाल्लाह मैं 1 बजे प्रोग्राम में शामिल करूंगा, और हमारे साथ समरा मौजूद हैं। समरा ने आज के इस टॉपिक के हवाले से क्या फीडबैक दिया है कि क्या सारी खुशियां दौलत से मिलती हैं या नहीं, इस पे हम कमेंट शामिल करते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। और दोस्तों आप लोग भी इस हवाले से फीडबैक दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर रिमशा इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। आप कहती हैं कि जी आज कल की ज़िंदगी अगर पुरसकून गुजारनी है तो दौलत बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपके पास होनी चाहिए ताकि आप किसी भी चीज़ के लिए, ख़रीदने के लिए, खाने पीने के लिए, ओढ़ने के लिए, पहनने के लिए ये ना सोचें कि काश ये मेरे पास पैसे होते तो मैं ख़रीद सकता। सो निकल आए कहानियों से कि पैसे से सब कुछ नहीं होता जी। ठीक हो गया डॉक्टर साहबा, आप वैसे फ़ीस कितनी चार्ज करती हैं ये भी मुझे बताइएगा।

चले जी आपका कुछ फीडबैक प्रोग्राम में शामिल करते हैं। समरा कहती हैं जी, खुशी की दौलत से बड़ी कोई दौलत नहीं, और खुशी से दौलत मिल जाती है मगर दौलत से ना खुशी ना सुकून ना ही दिली इत्मीनान मिलता है। और आप जब टूरिस्ट के वाले से हम बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि जो टूरिस्ट होते हैं उनको लोग अमीर समझते हैं, इस वजह से उनको चीज़ें भी महंगी दी जाती हैं। बहुत शुक्रिया समरा आपके मैसेज का। इसके अलावा हमें ज्वाइन किया जी आमना ने इस्लामाबाद से। आमना थैंक यू सो मच आप ने ज्वाइन किया, और आप इस टॉपिक के हवाले से काफ़ी तफसीलन आपने चीज़ें ऐड की हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि प्रोग्राम में इसको भी शामिल कर सकें। आप कहती हैं कि पैसा ज़िंदगी की बहुत सी मुश्किलात कम कर देता है, बुनियादी ज़रूरियात, इलाज, तालीम, महफूज रिहाइश और माली दबाव से निजात इंसान के इत्मीनान में बड़ा किरदार अदा करते हैं। इसलिए एक हद तक आमदनी बढ़ने से अमूमन खुशी और ज़हनी सुकून भी बढ़ने लगता है, और लेकिन इसके बाद खुशी का ताल्लुक दूसरी चीज़ों से भी होता है, अच्छे ताल्लुकात और मोहब्बत, सेहत, मकसद और मायने का एहसास, इज्जत नफ्स, आज़ादी और अपने फैसले खुद करने की सलाहियत, ज़हनी सुकून। हम अक्सर ऐसे लोगों को देखते हैं जिनके पास बहुत दौलत है मगर वो परेशान या तन्हा रहते हैं। तो थैंक यू सो मच जी, आपने बड़ी डिटेल में ये चीज़ें लिखी हैं, और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि अगर आपकी ज़िंदगी में को बहुत अच्छे दोस्त, अच्छा हमसफ़र और ये चीज़ें आपके पास है ना, तो आप मेंटली तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि आप सुकून हैं। अगर आपके पास अल्लाह ताला ने सेहत दी है, आपका हमसफ़र बहुत अच्छा है, आपके दोस्त जो आपके करीब सर्कल में है वो बहुत अच्छे हैं, तो कम अज़ कम ये यहाँ तो आप फॉल करते हैं कि आप सुकून, आप मेंटली तौर पे सुकून है। बाकी रिसेंट लास्ट वीक में चूँकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इंसान ऑब्ज़र्व करता है, हम स्टूडियो में ही थे, मेरा प्रोग्राम था हाउस एट, हमारे प्रोड्यूसर हैं, सीनियर प्रोड्यूसर साहब हैं इमरान साहब, तो उन्होंने एक हमारे को ड्यूटी ऑफिसर हैं जमशेद भाई, तो लास्ट वीक में चूँकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इंसान ऑब्ज़र्व करता है, हम स्टूडियो में ही थे, मेरा प्रोग्राम था हाउस एट, हमारे प्रोड्यूसर हैं सीनियर प्रोड्यूसर साहब हैं इमरान साहब, तो

थोड़ा हाथ और टाइट कर दें, अगर 3 टाइम खा रहे हैं 2 टाइम खाएं, आपकी ज़िंदगी सुकून में हो जाएगी। अगर ये नहीं कर सकते तो अभी अगर आप 50,000 कमा रहे हैं तो अपनी इनकम को इनक्रीज़ करने के लिए या तो कोई स्किल सीखें या कुछ ऐसा करें कि आप इनकम ज़्यादा करें, तब आप सुकून में। वैसे तो बात बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन सोचने की बात है और कहने की बात है कि कैसे। मैंने भी उनसे ये पूछा था कि इमरान भाई 200 कैसे, तो उन्होंने जी ढेर सारी बातें, जैसे इंसान समझाता नहीं जी, प्रॉपर्टी का काम कर लें, खाने पीने का काम कर लें आप, और ऐसी चीज़ें हैं, सोशल मीडिया का दौर है, कंटेंट बनाना शुरू कर दें, अच्छा कंटेंट बनाएं, लोग देखेंगे। लेकिन दोस्तों माजद के साथ, आजकल जिस किस्म की कंटेंट अपलोड होता है आप देखते हैं फैमिलीज़ को लेके, मतलब आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। मैंने एक दफ़ा पहले भी टोटल प्रोग्राम किया था इस हवाले से कि कहाँ जा रहे हैं हम, मतलब किस साइड पे जा रहे हैं, अल्लाह लियो किड़े पास टोर पे, मतलब पैसा कमाने की खातिर। आप ये जो टिकटॉक लाइव ब्रॉड की मैं बात कर रहा हूँ, कोई एक आधी वीडियो आपकी नज़रों से गुजरेगी तो आप हैरान रह जाएंगे कि यार ये मतलब कम्युनिटी अपनी फैमिली को, अपने ख़ानदान वालों को कैसे फेस करते होंगे कि हम ये क्या कॉन्टेंट अपलोड कर रहे हैं। चलें जी, बहुत ज़्यादा बातें होंगी, अब दिल की बात करते हैं। आतिफ असलम की आवाज़ को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। आप भी बताइएगा कि आप दिल की सुनते हैं या दिमाग की सुनते हैं। और इंसान की जिंदगी में छठी इसका भी बहुत बड़ा किरदार होता है। यूसुफ साहब किसी और चीज़ की सुनते हैं। आज इस स्टूडियो में बड़ी बात है, चांद इस वक्त, वैसे भी जब मैं स्टूडियो आ रहा था बड़ा प्यारा लग रहा था आसमान पे, स्टूडियो में भी एक चांद है जी, यूसुफ मोहम्मद यूसुफ जी, इतवार को 10 से 12 प्रोग्राम करते हैं, लेकिन आज लेट नाइट यहाँ बैठे हुए हैं। और मैंने उनसे पूछा दिल की सुनते हैं दिमाग की, लेकिन उन्होंने इशारा किया कि मैं सिर्फ अपनी आंखों की सुनता हूँ। सलमान भी समझ गए।

चले जी, एक वोट और आ चुका है जी स्पेन की जानिब। आरजे अवैस खटक जी, 101 की एक और बहुत खूबसूरत आवाज़, क्योंकि आजकल जो है फुटबॉल चल रहा है और आप जानते हैं कि जो लोग हाउसर सुनते रहे हैं और रेगुलर 101 के लिसनर हैं, अवैस खटक जी 101 की टीम का बहुत अहम हिस्सा।

अभी भी ऑन एंड ऑफ कभी कभी आते जाते रहते हैं और मोहब्बत का इजहार करते रहते हैं। आई थिंक इस वक्त ड्राइव कर रहे हैं, वो सुन रहे हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि अवैस भाई, चूंकि आपकी बड़ी गहरी नज़र है, आप फुटबॉल से रिलेटेड एक बड़े अहम प्लेटफॉर्म के लिए वो प्रोग्राम कर रहे हैं जी, और उन्होंने कहा कि स्पेन जीतेगा जी, और हालांकि वीडियो उन्होंने कुछ दिन पहले मेसी के लिए लगाई थी कि लोग उन पर बेवजह बिला वजह तनकीद करते हैं, और लेकिन वो कह रहे हैं कि स्पेन जीतेगा। कल इंशाल्लाह ज़बरदस्त ट्रांसमिशन दोस्तों आपके लिए लेकर आएंगे, उसमें देखते हैं कि आप लोग क्या उस वाले से फीडबैक देंगे, और फाइनल की जो ट्रॉफी है वो कौन सी टीम अपने नाम करने में कामयाब होगी, और इंशाल्लाह ज़रूर आप ज्वाइन कीजिएगा जिस कल आरजे आतिर भाई का प्रोग्राम है, उनके शो में हम डिफरेंट दूसरे आरजेज़ को भी और ख़ासकर सर अब्दुल वहीद शेख साहब को भी हम इनवाइट करेंगे अपनी स्पेशल ट्रांसमिशन में। मैडम सदफ भी ऑन टेलीफोन कॉल हमारे साथ होंगी, हम कोशिश करेंगे कि अवैस खट्टक को भी ऑन टेलीफोन हम ज्वाइन करवा सकें, जो कि वो मसरूफ़ होंगे, और दीगर दोस्त भी जो पहले हाउस एड की टीम का हिस्सा रहे हैं उनसे भी फीडबैक लेने की कोशिश करेंगे। 12:50 हो चुके हैं दोस्तों, आपका मेरा साथ रहेगा ठीक शब के 2 बजे तक। बात हम कर रहे हैं कि क्या खुशी सिर्फ दौलत से ही मिलती है या इसके कुछ और भी जाविये हैं, आप किसी और तरीके से भी खुशी को हासिल कर सकते हैं, तो ये आप मुझे फीडबैक दे रहे हैं 4471 और facebook.com/FM101 चैनल पाकिस्तान पर। 1 बजे के बाद दोस्तों आपकी लाइव कॉल्स हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आज जो है वो टाइम थोड़ा एक्सीड कर गया, हम नॉर्मली 12:45 के बाद जो है लाइव कॉल शामिल करते हैं, लेकिन आज जो है थोड़ा सा डिले हो गया। कोई बात नहीं जी, 1 बजे के बाद हम लाइव कॉल शामिल करेंगे। अहमद हमारे साथ पेशावर से मौजूद हैं। आप कहते हैं सर सुकून तो पैसे पे है, और उसके अलावा आपने कहा कि आपकी ज़िंदगी में अगर वालदैन हयात हैं तब आपको सुकून होता है, और आपने कहा कि हमसफ़र जो है, वाइफ का वर्ड आपने लिखा है, वो अगर आपकी ज़िंदगी में है, अच्छा हमसफ़र है, तो आपको ज़िंदगी में सुकून मिलता है। बहुत शुक्रिया अहमद भाई, पेशावर से आप हमें सुन रहे हैं जी। अब्दुल नूर हाशमी साहब लाहौर से पार्टिसिपेट करते हैं हमेशा, मेरे दोस्त आपका बहुत शुक्रिया, आपने एक बहुत खूबसूरत पैगाम लिख के भेजा है, काफ़ी डिटेल में आपने मैसेज लिखा है। नूर हाशमी साहब लाहौर से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। फैसल साहब इस्लामाबाद से, गजनफर भाई क्या हाल है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, और आपने कहा जी काफ़ी अर्से बाद आपका प्रोग्राम सुना, प्लीज़ कहते मुझसे मिलने जी, और चले मेरे दोस्त ज़िंदगी में कभी नसीब में हुआ तो मुलाकात आपसे ज़रूर करेंगे, नंबर भी आपने लिख भेजा है, अल्लाह ले खेड़े पास।

आज म्यूजिक में काफी ज्यादा आपको चेंज जो नजर आ रहा होगा इसकी, ये जी हम शुक्रिया अदा करेंगे मोहम्मद यूसुफ साहब का, उनकी प्लेलिस्ट हमेशा बड़ी खूबसूरत होती है और हमारे प्रेजेंटर जब प्रोग्राम करते हैं उनकी कोशिश होती है कि यूसुफ

0: से प्लेलिस्ट जो है बनवाई जाए। ये हाथ वैसे आते नहीं है, आज भी बड़ी मुश्किल से इनके फोल्डर से कुछ जो ट्रैक्स ढूंढ के हमने निकाले। ईद का ये कोई जिक्र आ रहा है इस ट्रैक में, वो भी हम शामिल करेंगे साथ साथ। दोस्तों आपकी लाइव कॉल्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप ना चीज़ों को ड्रैग मत किया करें। हमारे जो रेगुलर सुनने वाले हैं, आपसे तो मेरी बहुत मौदबाना रिक्वेस्ट है, हाथ जुड़े ने अल्लाह अले हो, अगर तुम वेख लो प्लीज़ देखें। बाकी जो दोस्त हैं वो भी कॉल्स कर रहे होते हैं, आप फिर जब आपकी कॉल मिलती है आप गुस्सा होते हैं कि जी इतनी मुश्किल से हम कॉल करते हैं। इसमें मैं आपका हमेशा शुक्रिया अदा करता हूँ प्रोग्राम के आखिर में जाते हुए कि ये बहुत बड़ी बात है जी, रात के 1 बजे या 1:10, 12 या किसी भी टाइम आप रेडियो में कॉल करते हैं, बाकायदा टाइम निकाल कर आप कॉल करते हैं, तो ये आपका बड़ापन है, आप लोगों का प्यार है, आप लोगों की मोहब्बत है। लेकिन प्लीज़ थोड़े मामलात ना शॉर्ट रखा करें ताकि बाकी दोस्तों को भी मौका मिल सके। और आज मैंने एक और सेगमेंट सोचा था कि 1:45 के बाद ना हम पोइट्री सुनेंगे, शॉर्ट छोटी दो लाइंस की जो आप मुझे सुनाएंगे। थोड़ी देर बाद हम अवैस कटक को लाइव लेंगे, उनसे फुटबॉल का पूछेंगे और उनसे भी पोइट्री सुनेंगे, वो टिकटॉक पे पोइट्री सुनाते रहते हैं। तो आज मेरी कोशिश होगी कि 1:40 या 1:45 के बाद जब गुंचा शौक शुरू हो जाएगा, सजाद भाई रेगुलर प्रोग्राम करेंगे, तब हम इसमें थोड़ी कमी करेंगे। आपको याद होगा कि जब वो 2 बजे से लेकर 4 बजे तक आकर प्रोग्राम करते हैं, मेरी कोशिश होती थी चूँकि वो पहले आ जाते थे तो मैं उनको अपने प्रोग्राम में रिक्वेस्ट करता था कि सजाद भाई थोड़ी देर आप हमारे साथ बैठ जाएँ, उनसे पोइट्री सुनते थे। अभी भी हम आज से इस प्रैक्टिस का आगाज़ करेंगे, तो देखते हैं कि क्या सिलसिला होता है। आज की पहली कॉल देखते हैं जी कौन हमारे साथ मौजूद हैं। यकीनी तौर पर हमारे रेगुलर कॉलर की किस्मत बहुत अच्छी है, उनकी कॉल मिलती है, मेरी खुशकिस्मती होती है, मेरी उनसे हमेशा बात हो जाती है। टेलीविजन स्क्रीन पे एक पर्सनालिटी इस वक्त नज़र आ रहे हैं, थोड़ी अरसे पहले ये इतने मोटे थे कि मैं क्या आपको बताऊं, ये लोग इतनी जल्दी वजन कैसे कम करते हैं, शायद ये गल समझ नहीं आ रहा, साढ़ा उत्थे तो उत्थे ही है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? जी जी करा
1: कैरी साहब, आपने जो आज का दिया है ना, जो खुशी कैसे मिलती है, पैसे से मिलती है या वैसे मिलती है?
0: जी सर,
1: इसमें दो बातें हैं
0: सर, बताएं, हुक्म करें आप।
1: एक खुशी है दौलत से, बड़ा शुभ दौलत से खुशी मिलती है,
0: ठीक है,
1: कुकुलाबाद से भी खुशी मिलती है,
0: इसमें कोई शक नहीं है जी।
1: सादगी में,
0: सादगी में
1: जी,
0: ठीक है सर। आपने प्यारा नाम नहीं बताया अपना।
1: मेरा नाम सुहेल है।
0: सुहेल सर कहाँ से कॉल कर रहे हैं आप?
1: मैं लाहौर से बोल रहा
0: हूँ। लाहौर से बोल रहे हैं सुहेल साहब, लाहौर का मौसम कैसा है?
1: लाहौर का मौसम बड़े गर्म है,
0: गर्म गर्म लाहौर का मौसम। और दिल का मौसम कैसा है आपके?
1: दिल बस वो खुशी है।
0: चले सर,
1: अल्लाह पे ज्यादा थोड़ा सा अपने आप को तो क्या कहते हैं कि अल्लाह के सपोर्ट कर दिया हुआ
0: सर, अल्लाह
1: तो दिल हमेशा खुश रहता है। खिदमत करें, खुशी हासिल करें, पैसा कभी ना कभी आपको नाखुश जरूर करता है, रिश्तेदारों में, बहन भाइयों में या दोस्तों में। लेकिन जो समझ लेता है ना बंदा कि बस अल्लाह तो अल्लाह आपको खुशी महसूस देता है जब अल्लाह के कहे हुए बात पे आप
0: अमल करते हैं,
1: साथ में रहे और ये भेजा खर्चे ये वो फ्लॉन्चिंग कर रहे थे।
0: बहुत शुक्रिया सर,
1: करती है जब आपको।
0: बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल बड़ी जबरदस्त बात है कि आपने सर, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर गपशप होती है, ठीक है? अल्लाह हाफिज जी। और बिस्मिल्लाह करा उन्होंने फोन कर दुआ सी। अस्सलाम वालेकुम जी।
2: अस्सलाम वालेकुम, हर बात है जिसकी प्यारी, हैदराबाद से कॉल करते हैं आपको,
0: शाहिद अंसारी साहब, कैसे हैं आप?
2: जाने अल्लाह का शुक्र है, मेरे मौला का करम है, मेरे पाक परवरदिगार की मदद से नमाज में आप पढ़े, आपको उधर बड़ा सुकून मिलेगा।
0: बिल्कुल ठीक,
2: अच्छे हालत में है उसमें। अच्छा, अगर आप थोड़ी सी ज्यादा देर, जैसे आपको पता मुझे गाने गाने का शौक है, मैंने अपना जाती गाना रिकॉर्ड करा लिया।
0: अंसारी साहब, आज आपने बहुत दिल की बात की है, शीशे के उस पार हमारे प्रोड्यूसर साहब खड़े हैं और उन्होंने एक किस्म की ना मेरे गर्दन पे ना छुरी तो नहीं कहूंगा, हाथ रखा हुआ है कि क्या नहीं साहब, आज नहीं गाना सुनना किसी को। नहीं, उन्होंने ना इनकार कर दिया, नेक्स्ट टाइम आपको पता है मैं सुनता रहता हूँ गाने।
2: कोई मसला नहीं,
0: जज़ाक अल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया,
2: आप हमारी बात रखते हैं, इंशाल्लाह हम भी आपको
0: बात करते हैं, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी जी। एक दफ़ा अंसारी साहब से पता नहीं किस टॉपिक मैंने रखा था, बातचीत चल रही थी, तो कहते हैं इनका ना हमेशा ही हर किसी को ना जानी कहते हैं, हर किसी को जानी कहते हैं। तो मैंने इनसे पूछा कि अंसारी साहब कभी ज़िंदगी में इस तरह हुआ है कि आपको ये वर्ड बोलने में थोड़ी सी

0: दिक्कत हुई हो या परेशानी हो। कहते जी हाँ, एक दफ़ा मैंने अपने दोस्त की वाइफ को भी जाने कह दिया था। मैं क्या सारे साहब फिर तुम बच्चे कहवे हो। तो ये बाज़ूकात होता है इंसान ना कि मतलब आप फ्लो में कोई भी बात कर देते हैं तो वो आदतन चीज़ें नुकसान देती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी।
1: वालेकुम सलाम ज्ञानी भाई, क्या हाल है?
0: ओ बिस्मिल्लाह करा त्रेड़ साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं?
1: अल्लाह ने शुक्र, अल्लाह ने एहसान, आप सुनाएं खैरियत है?
0: मैं बिल्कुल ठीक त्रेड़ साहब, आपकी सेहत से ठीक है, सब खैर खैरियत है?
1: अल्लाह का एहसान है। और सबसे पहले तो मैं सलमान भाई को वेलकम कहता हूं के ओका ही बिल्कुल इजी निशान बन गया और फोन भी अटेंड ना करे ने।
0: अच्छा, ये ऑनर शुक्र,
1: सलामत रखे
0: सर। सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
1: सब भाइयों के दोस्तों के लिए ढेरों दुआएं और एमएस मदक भाई के मेरी तरफ से मोहब्बत पर सलाम, अल्लाह पाक ने सलामत रखे जी।
0: सर बहुत शुक्रिया।
1: टॉपिक पे यही है कि हजरत बाबे काज आजम का जब आखिरी वक्त आया तो आवाम रोने लग गई, तो आपने कहा कि क्यों रो रहे हो कि आपके जाने का वक्त आ गया है तो हम परेशान हैं, हमारा क्या बनेगा? कि मैं बाबा ने कहा कि मैं अपने तस्वीर छोड़ के जा रहा हूँ कि ताले को भी दिखाओगे तो ताला खुल जाएगा। ये तो दुनियावी खुशी है ना जी, जो मतलब के जिसके वो कहावत है कि जे मैदाने उसके कमले भी सियाने, ठीक है? तो जो असल जो हकीकत है ना, जो असल जो है जो सुकून या जो असल जो हकीकत है जो वो है आपने नबी पर दरूद पढ़ना।
0: बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल
1: सब कुछ, सब कुछ मिल जाता है
0: इसमें कोई।
1: अगर आप जाएं किसी अड्डे पर तो मुख्तलिफ किस्म के स्टाप होंगे, फिर बताइए कासिम मार्केट है, चूड़ चौक है वगैरह
0: भी,
1: तो हर एक अपना अपना कनेक्टर गाड़ी का किधर खींच रहा होगा, किधर चार पांच बंदे ड्राइवर कनेक्टर इकट्ठे हो जाते हैं तो बंदा बदल हो जाता है कि मैं किधर जाऊं, क्या करूं, किसकी मानूं।
0: ऐसे ही
1: बंदा दंग आके कहता है यार मैं कहीं भी नहीं जाना, मेरी जान छोड़ेगा।
0: ऐसे ही ऐसे ही।
1: तो जब 73 फिरका होगा तो 73 फिरके में से जो हक होगा, हक जो जो सच्चा होगा वो कौन होगा? हजरत ज़ैनुल आबिदीन के आगे उस जमाने में किसी ने सवाल किया कि सच्चा कौन होगा 73 फिरका, जो अपने नबी का जो फरमान है। हजरत लजपाल ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया कि जो कसरत से नबी पर दरूद पढ़ने वाले होंगे वो हक पर होंगे और वो सच्चे होंगे।
0: बिल्कुल ऐसे ही।
1: मैंने इसी तरह से ही ये जो एक मैं पिंडी जा रहा था तो गाड़ी के पीछे लिखा हुआ था क्या क्या अपने आप दरूद शरीफ पढ़ा है, आगे जब पीर बताई वाले कब्रिस्तान में उधर एक वलिया अलग ही मैदान की उधर दुआ मांगने के लिए गया तो उधर भी लिखा हुआ था कि हर परेशानी का जो हल है वो दरूद
0: शरीफ
1: है। उधर भी मैंने इसको अपनी आदत बना लिया।
0: बहुत अच्छी आदत है त्रेड़ साहब, जज़ाकअल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत मैसेज आपने अब तक पहुंचाया जी। अब से कुछ ही लम्हे बाद जी अवैस खटक आरजे, उनको हम टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद होंगे, फीफा के हवाले से बातचीत करेंगे और कुछ और चीजें दोस्तों मेरे साथ रहेगा।

0: दोस्तों 1:04 हो चुके हैं आपका, मेरा साथ रहेगा ठीक शब के 2 बजे तक। मुझे कहते हैं गजनफर महमूद क्यानी और इस वक्त टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद हैं आरजे अवैस खट्टक, उनको खुश आमदीद कहेंगे। अवैस भाई अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम क्यानी भाई, कैसे हैं आप?
0: मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ माशाल्लाह। रात के इस पहर आवाज़ आपकी बड़ी माशाल्लाह मुस्कुराती और फ्रेश आवाज़ अवैस भाई, गुड मॉर्निंग हो ये थोड़ी हूँ क्या बात है। अच्छा वैसे भाई, कल फुटबॉल की तारीख बदलने जा रही है, एक नया बाब लिखा जाएगा, नया चैंपियन ये वर्ल्ड कप किसके ताज जो है किसके सर जाता है। स्पेन आपने मुझे मैसेज में बताया था, तो ओवरऑल वैसे क्या आपको लग रहा है कि हवाएं किस तरफ चल रही हैं?
1: यार ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा कि जिससे कल को 101 के जो लिसनर्स हैं ना वो मेरा मजाक उड़ाएं कि अवैस भाई ने ये कहा था, या इवन दो के मैनेजमेंट जो है वो कहे कि यार बंदा तो अच्छा शो किया करता था लेकिन बात इसने सही नहीं की तो मैं यही कहूंगा कि जो फुटबॉल है उस पर मेरी ग्रिप ऑब्वियसली उस तरह से नहीं है, क्योंकि मैं एक जगह पे एज ए प्रोड्यूसर जो है वो पूरा प्रोग्राम कंडक्ट करवा रहा हूँ, तो वहाँ पे जो लोग तजिया कर रहे होते हैं मैं उसी को ही वोट करके आपको बताता हूँ कि बेसिकली बड़े ना पाए की टीमें दोनों का जैसे कहते हैं कि मुकाबला जो है बड़ा सख्त होगा। ज्यादातर यही और देखने में आया इस वर्ल्ड कप के अंदर के जो सेम लीग्स के अंदर खेलने वाली टीम्स होती है ना आपस में, उनका प्ले ऑफ स्टाइल जो है वो एक दूसरे को काफी यानी के समझने वाला होता है, तो एक दूसरे को काउंटर करना जरा आसान होता है। इस केस में ये है कि स्पेन जो है ना वो फुटबॉल की लैंग्वेज में कहते हैं टिकी टाका फुटबॉल, यानी कि शॉर्ट पासेस के अंदर बहुत ज्यादा खेलती है।
0: अच्छा अच्छा,
1: ठीक है। हाँ तो मतलब अगली टीम को थकाने वाला जो अंदाज होता है ना कि जिसमें वो बहुत ही ज्यादा पासेस उनके आपस में चल रहे होते हैं और अगली टीम को, और जबकि अगर हम अर्जेंटीना की बात करें तो उनका अटैकिंग जो एक बिहेवियर है ना वो ये एक ऐसा बिहेवियर है कि जो इस वक्त स्पेन को बीट कर सकता है। अदर देन दैट अगर आप देखें तो किसी ने भी शायद इतना आसान हदफ नहीं समझा होगा कि जिस तरीके से स्पेन ने फ्रांस को बीट किया है। हालांकि अगर आप अब भी यानी कल भी अगर आप दोबारा मैच करवाते हैं स्पेन और फ्रांस का, तो शायद ज्यादातर लोग ये कहेंगे कि यार फ्रांस जो है ना उसके चांस ज्यादा हैं, क्योंकि फ्रांस की जो फ्रंट के जितने भी प्लेयर थे उनकी जो मिडफील्ड से स्ट्राइकर तक की जो उनकी पूरी एक फौज जैसे कहते थे वो सारे दुनिया के टॉप के सुपरस्टार थे। डेम्बेले की बात कर लें, ओलिसे की बात कर लें, आप किलियन एम्बाप्पे की बात कर लें, लेकिन मतलब ये वो खिलाड़ी थे कि जिनको बीट करना इम्पॉसिबल था, और इनके अगेंस्ट जो बेंच पे भी प्लेयर थे इतने जबरदस्त थे कि वो भी यही कहा जा रहा था कि फ्रांस को बीट करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन स्पेन ने कैसे उनको नचाया और कैसे उनको हराया मतलब किसी ने इतना आसान नहीं सोचा होगा। सो कीपिंग डूइंग दैट, मेरे ख्याल में स्पेन ने जितनी बड़ी टीम को हरा के फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है तो मुझे लगता है कि मेंटली तौर पर ना ये वो बहुत ज्यादा जैसे कहते हैं ना कि मोटिवेटेड होंगे और बड़े आप कह लीजिए कि फेवरेट हैं। अर्जेंटीना का ये है कि चूंकि ग्रुप स्टेजेस से लेके अगर आप इवन दो के क्वार्टर फाइनल तक देखते हैं तो सारे ही मैचेस उनके बहुत आसान थे, और उसके बाद सेमीफाइनल में उनका पहला बड़ा चैलेंज आया था अगेंस्ट इंग्लैंड। अदर देन दैट उनके सारे मैचेस ऐसे थे कि जो शायद आप कह सकते हैं कि सबने ये कहा था अर्जेंटीना आराम से जीतेगा, किसी एक मैच में ऐसा नहीं कहा गया कि नहीं ये टीम है जो अर्जेंटीना को चैलेंज दे सकती है, क्योंकि उसमें कोई भी टॉप ईयर की टीम नहीं थी। सो आफ्टर बीटिंग इंग्लैंड अब उनका जैसे कह सकते हैं कि इस टूर्नामेंट की दूसरी बड़ी टीम, पहले मैं फ्रांस को समझ रहा था लेकिन दूसरी जो बड़ी साइड है स्पेन उसके अगेंस्ट मुकाबला है, उनके अटैक और उनके वो टिकी टाका वाले स्टाइल फुटबॉल स्टाइल के अगेंस्ट मुकाबला है। लेट्स सी, अर्जेंटीना को एक चीज बहुत एज दे रही है वो ये दे रही है कि अगर आपने पिछले उनके 2-3 मैचेस देखे हो ना तो उसमें सबसे जो जबरदस्त उनकी चीज रही है वो ना हार ना मानने वाली जो उनकी एफर्ट थी कि लास्ट मोमेंट तक जो है 2 मैचेस ऐसे आए हैं जिसमें लग रहा था अर्जेंटीना है अभी बाहर हुआ लेकिन वहां से उनका कम बैक और फिर मैच जीतना, दिस इज समथिंग स्पेशल।
0: बिल्कुल सही,
1: तो बड़ा मजे का मैच होने वाला है
0: इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया वैसे भाई, आपका पॉइंट पहुंचा, कल एक दफा फिर आपको डिस्टर्ब करेंगे और कल इस ट्रांसमिशन का हिस्सा जरूर बनेगा, ठीक है?
1: इंशाल्लाह सर,
0: जज़ाकअल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। अवैस खट्टक हमारे साथ मौजूद थे। तो दोस्तों वापस आते हैं जी अपने प्रोग्राम की जानिब, और फॉर्मेट हमारा आप जानते हैं कि आज का एक टॉपिक मैंने आपसे पूछ रखा है, उस पर हम बात कर रहे हैं कि क्या खुशी सिर्फ दौलत से ही मिलती है। कुछ फेसबुक पे दोस्त जो हैं कमेंट कर रहे हैं, जिनको भी हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। facebook.com/FM 101 चैनल पाकिस्तान, लाइव कॉल्स पे भी हम आते हैं, और चूंकि काफ़ी ज़्यादा लोग नाराज़ होते हैं कि आप फेसबुक के कमेंट्स प्रोग्राम में शामिल नहीं करते, मेरी कोशिश तो होती है दोस्तों कि आप लोगों का जो फीडबैक है वो प्रोग्राम में शामिल किया जाए। देखते हैं कि समरा मुल्ला आपका बहुत शुक्रिया, डिम्पल लड़की ले जी, नाम इस किस्म के होते हैं फेसबुक पे कुछ समझ नहीं आती। डिम्पल लड़की ने जी मैसेज किया जी, आपका बहुत शुक्रिया, पता नहीं डिम्पल मुंडा है कि कुड़ी है, बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्ला फूड्स, क्या बात है जी, देखिए इस तरह आप अपनी जो प्रमोशन है वो कर सकते हैं अगर आप किसी किस्म का बिजनेस कर रहे हैं जी। कहते हैं ज़्यादा दौलत भी इंसान को बेरवी का शिकार कर देता है, बहुत शुक्रिया। माँ बाप की दुआओं से सुकून मिलता है और दूसरों को खुश करके खुशी और सुकून मिलता है, ये मैसेज किया जी बिस्मिल्ला फूड साहब। उन्होंने खुशी सिर्फ दौलत से नहीं किस्मत से मिलती है, ये तीन मैसेज बैक टू बैक उनके थे। आप अपना नाम प्लीज़ ओरिजिनल नेम भी मैसेज के एंड पे लिख दिया करें, जज़ाकअल्लाह, बहुत शुक्रिया। रियाज भट्टी साहब लाहौर से मौजूद हैं। डॉक्टर किश्वर आरिफ साहब रावलपिंडी से मौजूद हैं, कहते हैं जिन लोगों के पास ज़्यादा पैसे होते हैं उन्हें उन्हीं के यहाँ खुशियाँ कम होती हैं, और खुशी हर हाल में जो भी आपके पास ब्लेसिंग है उस पर अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया करें। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। बख्तावर क्यानी मास्टर मौजूद हैं, यूसुफ भाई को जो सलाम दे दी चले गए हैं वो जी भाग गए। अब उस्मान बिन इमदाद मास्टर मौजूद हैं जद्दा से, जद्दा से याद आया मेरे बहुत ही प्यारे से दोस्त मतीउल्ला जान, मेरे क्लास फेलो मती, मेरे भाई आपका बहुत शुक्रिया, आप इस वक्त सुन रहे हैं और आप भी इस वक्त सऊदी अरेबिया मौजूद हैं। मतीउल्ला जान जी, हम क्लास फेलो थे, हमने इलेक्ट्रॉनिक्स का डिप्लोमा किया था माशाल्लाह, और मती उन खुश नसीब लोगों में से हैं जिनकी ये बात दुरुस्त साबित हुई कि जब हम एडमिशन ले रहे थे मैट्रिक के बाद डिप्लोमा में, तो लोग कह रहे थे जिस दिन तुम्हारे हाथ डिप्लोमा होएगा अगले दिन तुम्हारे को नौकरी होएगी, बल्कि कंपनियां तुम्हें लभन गया कि डिप्लोमा होल्डर कितने ने, तो बहुत कम लोग जी माशाल्लाह, उनमें से मतीउल्ला जान एक हैं जो इस वक्त माशाल्लाह सऊदी अरेबिया में बड़ी अच्छी कंपनी में जॉब करते हैं, और एक और मेरे दोस्त बासिम रियाज एक रोल नंबर आई थिंक मुझसे आगे बैठा करते थे, और वो पेपर्स में काफ़ी दफ़ा उनको बहुत ज़्यादा तंग किया, ये जब क्विज़ वाला ऑप्शन होता था हम के मती भाई ये बासिम भाई ये बता दें वो बता दें, तो वो बड़ा गोल्डन टाइम था। बहरहाल मतीउल्ला जान आपका बहुत शुक्रिया, आपने कहा कि मेसी जीतेगा, और इसके अलावा आपके दोस्त हैं फेड्स, उनका FERDZ उनका नाम है, और वो फिलिपाइन से उनका ताल्लुक है, बहुत शुक्रिया। आपने कहा कि मेसी जो वर्ल्ड कप है वो लेके जाएगा, मती मेरे दोस्त आपका बहुत शुक्रिया, आपका मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में जिक्र करता रहता हूँ। जो दोस्त क्लास फेलो जो होते हैं ना आपके, अगर माजद के साथ जी आज गला जो है आज चाय बहुत ज़्यादा पी है मैंने, ऑलमोस्ट कोई आप यकीन नहीं करेंगे कि 16-17 कप चाय पी है, तो गला मुझे लग रहा है कि चाय हो गया, हालांकि मीठा हम चूँकि अब ये प्रमोशन तो खैर नहीं, हर गली मोहल्ले में कोयटा कैफ़े जो बहुत ज़्यादा खुले हुए हैं उनको अगर आप कहना है मरा लाला चाय कम का मतलब वो समझते हैं कि ज़्यादा, मतलब उनसे ना बाकायदा जाके उनको इशारा करना पड़ता है लाला पती तेज चीनी कम, लेकिन कम कहने के बावजूद भी उनकी ना चीनी काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है, और वो ये चाय की एडिक्शन जो है पता नहीं कब ख़त्म होगी। और चले जी टॉपिक कहीं और जा रहा है, 0519202540 0511111001। अस्सलाम वालेकुम जी फजल साहब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा ब्लास्ट कर रही है, प्लीज़ एक दफ़ा दोबारा कॉल करें ताकि मेरे लिए आसानी हो सके जी, आप लोग कॉल करते हैं तो क्वालिटी देखा करें। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम,
0: कैसे हैं प्यारे भाई?
2: अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी सब बात कर
0: अब्बासी साहब, सेहत ठीक है आपकी?
2: अल्हम्दुलिल्लाह
0: सर। खुशी दौलत से मिलती है या कोई और जाविया आपकी नज़र में जिंदगी में?
2: अरे फुटबॉल पे ना बात कर लें
0: सर, कह रहे हैं बस बताएं स्पेन या अर्जेंटीना? स्पेन के साथ, स्पेन के काफी ज्यादा वोट, आपने उस दिन भी ऑनर कहा था मुझे याद आ गया सर। अब बताएं खुशी के हवाले से।
2: यार खुशी मेरे ख्याल में ज्यादा जवाब आपसे यही आएंगे कि दौलत से मिलती है, लेकिन मेरे ख्याल से नहीं, दौलत से नहीं।
0: अच्छा दौलत से नहीं मिलती
2: है। के लिए सेहत का होना बहुत जरूरी। देखिए आपने देखा होगा कई लोग होते हैं फेर और देर दौलत होती है, लेकिन सेहत नहीं होती, वो बीमार होते हैं, वो खा नहीं सकते,
0: ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही।
2: तो क्या फायदा अगर
0: अगर आपके पास नहीं है।
2: जरूरत के लिए होनी चाहिए, पैसे जरूरत तो है।
0: बिल्कुल ठीक ठीक है, ठीक बहुत शुक्रिया आगे भाई। इसके अलावा कुछ कहना चाहेंगे?
2: इसके अलावा बहुत अच्छा प्रोग्राम है सर,
0: बहुत शुक्रिया।
2: कल अल्लाह आपने कुछ भी सुनाई थी, अब आएंगे बारह
0: इंशाल्लाह, इंशाल्लाह कल जरूर हाजिर होंगे, जिंदगी रही तो ठीक है।
2: और
0: बहुत शुक्रिया जी तमाम सुनने वालों को, वालेकुम सलाम। इसके अलावा जी हमारे साथ मौजूद हैं सबा ने रावलपिंडी से मैसेज किया। सबा कहती है कि मैं टीचर हूं और आजकल चूंकि छुट्टियां हैं, प्लीज़ ये दुआ करें ना कि जल्दी जल्दी स्कूल खुल जाए, बच्चों ने घर में दिमाग पागल कर दिया। मैंने जी आज जब प्रोग्राम का जब आगाज़ किया था ना, मैंने इस पर काफ़ी बात की थी ऑलमोस्ट 2-3 मिनट कि आजकल पेरेंट्स जो हैं खासकर चूँकि माएँ घर में होती हैं, उनके दिमाग जो है ना वो उलट कर दिए बच्चों ने, जिस घर में माशाल्लाह 3-4 बच्चे हैं और वो स्कूल गोइंग बच्चे थे, लेकिन आजकल छुट्टियां हैं उनको समर की और वो घर पे हैं और ना मतलब उन्होंने ना मतलब तहस नहस की होती है और वाकई जो माएँ हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, वो दुआएं कर रही हैं कब स्कूल खुलेगा। हालांकि स्कूल खुलने के बाद ना टफ रूटीन हो जाती है, ख़ासकर एज ए मदर आपने जल्दी उठना है, उनका नाश्ता वगैरह दिन का लंच और काफ़ी मतलब हमारे दौर में तो मतलब ये चीज़ें नहीं होती थी, अब तो बच्चों की मतलब इतनी ज़्यादा चीज़ें ऐड हो गई हैं, ये भी है वो भी है, 50 किस्म के वो लंच लेके जाते हैं, सानू लभदे होंदे सन 2 रुपए, वो भी उत्थे नान टिक्की ते पता नहीं क्या क्या। अस्सलाम वालेकुम जी।
2: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम प्यारे भाई। सर जी कॉल मिल गई आपकी, कोई बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
2: क्या नहीं भाई, क्या हाल है?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अपना प्यारा सा नाम बता दो।
2: नूर हाशमी, रिवाज गार्डन लाहौर से।
0: नूर हाशमी साहब आपका मैसेज भी हम तक पहुंचा था लाहौर से, कैसे हैं आप? ठीक है
2: अल्हम्दुलिल्लाह।
0: सर क्या कहना चाहेंगे?
2: मैंने एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ी थी।
0: जी जी।
2: हुजूर ने फरमाया कामयाब हो गया वो इंसान जो ईमान लाया,
0: ऐसे
2: उसे बकदरे जरूरत रोजी दी गई और फिर अल्लाह ने उसको उस पर कनात की तौफीक दी।
0: ठीक हो गया।
2: वो दौलत जरूरत के मुताबिक हो तो ठीक है,
0: ठीक है।
2: और कुरान कहता है कि दिलों का सुकून तो अल्लाह के जिक्र में है, तो ये ठीक है, दौलत के बगैर दुनिया का कोई काम नहीं होता, लेकिन ये सब कुछ चीज नहीं है। सबसे बड़ी सेहत जो नेमत है अल्लाह की,
0: बिल्कुल इसमें कोई
2: शक। दौलत को आप, दौलत से आप बिस्तर खरीद सकते हैं, नींद नहीं, ठीक है ना?
0: क्या बात है जी, बहुत शुक्रिया सर आपकी कॉल। जी
2: कर सजाद भाई आज आ रहे हैं कि नहीं?
0: नहीं सजाद भाई फिलहाल नहीं आ रहे, लेकिन वो मैंने एक छोटा सा सेगमेंट शुरू किया, हम इंशाल्लाह 1:45 के बाद ना मैं कोशिश करूंगा जो लोग पोइट्री सुनाना चाहते हैं वो कॉल करें।
2: शॉर्ट एक दो शेर मैं पढ़ दूं
0: सर? आप असल में वो 1:45 के बाद आप करना, मैं आपसे जरूर सुनूंगा, ठीक है? मैं सारी कॉल शामिल करूंगा आज, ठीक है? बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकअल्लाह, थैंक यू सो मच। दोस्तों 1:18 हुआ जाते हैं, बंदा इनाथ चीज को कहते हैं गज़नफर महमूद कियानी, ड्राइव करते हुए अगर आप हमारी आवाज सुन रहे हैं तो प्लीज ध्यान से ड्राइविंग करें, बराए मेहरबानी रॉन्ग वे पर ड्राइव मत किया करें, चाहे रात है दिन है शाम है। हमें 2 बजे प्रोग्राम खत्म होता है, ये जो पार्क रोड है एक तो वहाँ पे पता नहीं, अल्लाह करे वो जल्दी कंस्ट्रक्शन ख़त्म हो जाए, हम तो बिल्कुल बूढ़े हो गए हैं, पता नहीं कब ख़त्म होगी ये। आप यकीन जानिए कश्मीर से इस्लामाबाद आते हुए इतनी थकावट नहीं होती जितना ये चक्षुजात से लेकर जो आगे कोई पैच है छोटा सा जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, रोड टूटी हुई है, वहाँ इंसान इतना थक जाता है। मेरे पश्तून भाई जो हैं वो अगर ये ट्रैक सुन रहे हैं तो ये ट्रांसलेशन थोड़ी सी करके बता दीजिए कि ये खातून क्या कह रही हैं।

कामरान मजूका साहब आपका बहुत शुक्रिया जी, और आपने मैसेज किया, कहते हैं सुकून सारी दुनिया से बेनियाज होके जी अल्लाह ताला की इबादत में है, इसमें कोई शक नहीं जी, बहुत शुक्रिया। दोस्तों एक चीज़ मैं आपसे ना रिक्वेस्ट करूँगा, और ये बारहा मैंने पहले भी इस पर बात की है। देखें एक दफ़ा मैंने टॉपिक रखा था डिफेंस सुकून, मतलब सुकून क्या है, और उसके आगाज़ में बल्कि प्रोग्राम के दरमियान में बारहा मैंने ये बताया कि एज ए मुस्लिम हमारा जो बिलीव है, जो ईमान है, जो फेथ है, अल्लाह पाक, उनका जिक्र, दुरूद पाक और इस्लाम से रिलेटेड चीज़ों में है, इसके अलावा कोई शक नहीं है। चूँकि हम रेडियो में ये प्रोग्राम कर रहे थे, तो हर प्रेजेंटर या कोई भी जब बंदा प्रोग्राम करता है, उसकी ये कोशिश होती है कि सबसे पहले वो जो भी आपका मौज़ू गुफ्तगू है उसको आप प्रॉपर ना एलिब्रेट कर सकें, लोगों को बता सकें कि यार आप इसमें कहना क्या चाहते हैं और लोगों से क्या पूछना चाहते हैं। तो मैं हमेशा अपने इस टॉपिक में जब भी बोलता हूँ, मैं कहता हूँ कि आपने जो फीडबैक देना है ना दोस्तों, वो थोड़ा सा ना रिलीजियस से हट के दिया करें। चूँकि हम रेडियो का ये प्रोग्राम कर रहे होते हैं और आप इसमें ना दुनियावी लिहाज से जो चीज़ें हैं, चूँकि एक तो देखें वो तो डेफिनेट है, उस पर तो कोई शक नहीं है कि सुकून अल्लाह के ज़िक्र में है, कुरान पाक और इस तरह के इस्लाम की दीगर चीज़ों में, वो तो है ही है। लेकिन जब आप टॉपिक रखते हैं ना, तो उस पर आप दुनियावी लिहाज से, मैं खुद कहता हूँ कि यार दुनियावी लिहाज से आप मुझे बताएं कि आपको क्या चीज़ें फेस करना पड़ती हैं, कैसी हैं। तो जब आप इसको ना ड्रैग करके दूसरी जानब लेके जाते हैं, तो मैं इतना ज़्यादा रिलीजियस के हवाले से एक्सपर्ट नहीं हूँ, जैसे वो मेरे एक भाई ने एक हदीस कोट की है, तो ऑनर हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि आप विद रेफरेंस बात करें। तो वो आपसे मेरी दरख्वास्त है, मासूमाना सा ये रिक्वेस्ट है कि नेक्स्ट टाइम जब भी एक तो इसीलिए मैं ऐसा टॉपिक नहीं रखता जिसमें इस तरह की कोई चीज़ हो कि विदाउट रेफरेंस आप शेयर कर दें। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप हम बचपन से अभी आप चीज़ें सुनते हैं, हम तो कहते हैं ऐसी सारी ज़िंदगी कहानियाँ सुनते रहे हैं, ये तो इस तरह की कोई चीज़ थी ही नहीं। इस वजह से रिलीजियस के हवाले से मैं आप लोगों से ये कोशिश कहता हूँ मेरे भाइयों कि टॉपिक जो है उसको दुनियावी लिहाज से लेकर चला करें। और बाकी इसको मैं शुरू में मैं खुद अपने ही अल्फाज से कंक्लूड करता हूँ कि ये चीज़ साइड पे रखें, आपने इस हवाले से बात करनी है ताकि हम डिफरेंट लोगों का ओपिनियन ले सकें। वो चूँकि फिर जब रिलीजियस आप बीच में लेके आते हैं तो वो सेम चीज़ रिपीट होती है, तो वो थोड़ा सा कोशिश किया करें। या आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, अर्जी है, आप कुछ भी इसको समझ लें, लेकिन फिर गलत वही है कि तुसी करनी दे अपनी है। हमारे साथ डॉक्टर आयशा मौजूद है, आज काफ़ी ज़्यादा डॉक्टर सुन रहे हैं जी, अल्लाह खैर करे, या तो आज कहीं पर लाइट नहीं है या कोई और सिलसिला है। थैंक यू सो मच जी आपके मैसेज का, आपने कहा जी बहुत अच्छे बाद रेडियो ट्यून किया और कॉलेज लाइफ याद आ गई, उस वक्त हम रेडियो सुना करते थे। बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब आपका, और आपने रेडियो ट्यून किया, हमें अच्छा लगा। 051-920-2540, 051-111-0101 पर दोस्तों आपकी लाइव कॉल्स में प्रोग्राम में शामिल कर रहा हूँ। आज रावलपिंडी इस्लामाबाद में कुछ कुछ एरियाज़ में बारिश हुई है, लेकिन जो है हब्स बहुत ज़्यादा थी, मतलब गर्मी जो थी वो अपनी काफ़ी ज़्यादा शिद्दत में थी। एक्सपेक्टेड हैं बारिशें 18 से ऑनवर्ड बताई हुई हैं, चूँकि मानसून का सिलसिला शुरू हो चुका है, इसलिए मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा था कि जो पानी वाली जगह हैं उनसे दूर आप लोगों ने रहना है, बहुत ज़्यादा पानी के करीब नहीं जाना, और ख़ासकर जब भी घर से बाहर निकलें, ख़ासकर ये ट्रैवलिंग के लिए या आप टूरिज्म के लिए घर से जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा चीज़ों की आप लोगों ने एहतियात करनी है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है लाला? मैं ठीक हूँ, आप नाम बताएं प्यारा सा। बहुत शोर आ रहा है प्यारे भाई, प्लीज़ दोबारा कॉल करें। आज मुझे लगता है ना कि जहाँ बारिश हो रही है वहाँ पर ट्रांसमिशन जो है वो ठीक उस तरह नहीं आ रही, प्लीज़ थोड़ा सा ख्याल रखा करें ताकि जो कॉलर्स हैं हमारे उनसे हमारी आसानी से बात हो सके। और हैंड फ्री में हमेशा कहता हूँ, वो हमारे एक लिसनर हैं, सीनियर लिसनर हैं, उन्होंने मुझे कहा जी तुसी मेरा खर्चा करा दिता है, तुसी कहते हो हैंड फ्री ना इस्तेमाल किया, कहते हैं पुराने छड़ के नवे ले के आया, तो अब आपने मुझे इस तरह की कोई बात नहीं करनी। बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ मौजूद रहे हैं जमशेद इकबाल साहब, हम भी आपको सुन रहे हैं जी, प्लीज़ मेरा नाम ले लें। जमशेद भाई माजरत थोड़ा लेट हो गया, लेकिन आपका नाम मैंने शामिल कर लिया। आयशा आपके मैसेज का बहुत शुक्रिया। रोज़ी शेख हमारे साथ मौजूद है, खुशी का ताल्लुक दौलत से तो नहीं, अगर दिल खुश है तो हर चीज़ अच्छी लगती है, ये बात आपने बड़े मज़े की है।
माजवीन मैम आपका बहुत शुक्रिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वालेकुम सलाम। आपने स्पेन स्पेन ढेर सारी दफ़ा आपने कहा है कि स्पेन जीतेगा। उस्मान बिन इमदाद हमारे साथ मौजूद है जद्दा से, कहते हैं जी आपके प्रोग्राम सुन रहा हूँ, आपके प्रोग्राम में बहुत अपनाइत है, लगता है कि आपको पता है, कब से जानता हूँ, परदेश में आपके साथ खुशी का जरिया है आप जी, अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे। उस्मान भाई थैंक यू सो मच, आपके अल्फाज यकीन जानिए खून में इजाफा हो गया।

1:20 हुआ जाते हैं दोस्तों, आपका मेरा साथ रहेगा ठीक शब के 2 बजे तक। मुझे कहते हैं गजनफर महमूद, क्या नहीं आपको क्या कहते हैं, आप मुझे बता रहे हैं 4471 और facebook.com/FM101 चैनल पाकिस्तान पर। 1:40 के बाद दोस्तों आप लोगों से अगर आप चाहते हैं कुछ अपना कलाम सुनाना चाहते हैं, पोइट्री सुनाना चाहते हैं तो आपको खुश आमदीद हम कहेंगे। आप कॉल कर सकते हैं और शॉर्ट सुनाइएगा, आज चूँकि पहला दिन है।

क्या बात है जी जावेद भाई, आपका बहुत शुक्रिया जी। जावेद खान FM 101 की बहुत प्यारी आवाज़ और 101 की पहचान आप लोग, चूँकि जावेद भाई ने बहुत ज़बरदस्त ट्रांसमिशंस की हैं स्पोर्ट्स के अलावा, ये 12 से 2 का प्रोग्राम भी किया, 10 से 12 भी करते रहे, और बहुत सीनियर आज हैं हमारे, आज वो भी किए इतफाक से। आज काफ़ी ज़्यादा दोस्तों के मैसेज आए हैं जो आज सुन रहे हैं, पता नहीं जावेद भाई ने ट्यून किया या नहीं। बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया जावेद भाई, ये सारे गाने हम आपके लिए ही चला रहे हैं और एक बहुत अच्छा गाना हम आपके लिए चलाएंगे। बहुत शुक्रिया, आप बड़े अरसे से कहीं गुम हैं, मुलाकात वाला सिलसिला आपसे नहीं हुआ। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप के मैसेज का। हमजा रावलपिंडी से मौजूद हैं, मेरे सवाल ये है कि आपने बड़ा मासूम सा सवाल पूछा है, अब इसका मैं आपको क्या जवाब दूँ। कहते हैं जी लड़कियाँ जो हैं वो छोटी छोटी बात पर नाराज़ क्यों हो जाती हैं, और आप कह रहे हैं जी मुझसे भी कोई नाराज है और वो आपको सुन रही है, अल्लाह खैर करे जी। अल्लाह लो किड़े पास तुर पे हो हमजा भाई। मैं आप ये जो मैसेज आपने मुझे किया है इस पर अच्छे खासे आपके पैसे लग गए हैं, आप एक अच्छा सा सॉरी का वॉइस नोट करें और उनसे माजत करें, और ये अगर छोटी छोटी बातों पे नाराज होती है ना, ये छोटी छोटी माजत करने से ना राजी भी हो जाती हैं, तो ये आप ट्राई करके देखें, इंशाल्लाह अफाका होगा। और अगर मेरी आवाज़ वो सुन रही हैं जिनके बारे में हमजा साहब कह रहे हैं, तो प्लीज़ जी मान जाएं बात, आजकल के दौर में इस तरह के मतलब मीठे रिश्ते बड़े कम मिलते हैं। तो देखें आपको मनाने की कोशिश, सिफारिश कर रहे हैं जी, मतलब मेरी गल कोई कारण ना मेरा नहीं सुनता तो और कौन सुनेगा। बहरहाल हमजा भाई आपका बहुत शुक्रिया, मैंने पैगाम पहुँचा दिए, आप थोड़ी सी और एफर्ट करें, ये मैसेज एक मुझे किया है ये एक उनको भी करें, और माजत करें जिस वजह से अगर किसी किस्म का कोई मामला जो है वो आगे पीछे हो, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे।

अच्छा जावेद भाई ने मैसेज किया, कहते हैं जी मैं भी नाराज़, मेरी भी गर्लफ्रेंड जो है वो नाराज़ है और मैं भी उसकी याद में जा रहा हूँ। अल्लाह लियो, ये भाभी ने अगर आपके मैसेज देख लिए ना जो आप जो अपने मोबाइल से कह रहे हैं तो फिर आपकी खैर नहीं है। तहरीर में ये लिखा है जी, जिन्हें नींद नहीं आती उन्हें ही मालूम है सुबह होने में कितने ज़माने लगते हैं। मैंने अपने दिल से एक तवील मुकालमा किया और उसे आहिस्ता आहिस्ता से समझाया कि ये ज़रूरी नहीं कि हर दिन खुशियों से भरा हुआ हो। कभी हालात हाथ से निकल जाते हैं और कुछ दिन सिर्फ आजमाइशें बनकर आते हैं। मतलब उनका कहना है कि कभी हालात मुख्तलिफ होते हैं, कुछ दिन आजमाइशें आती हैं और आखिर में जो कंक्लूड वो करना चाह रहे हैं, कहते हैं कि मैं तुम्हें हर दिन हंसा नहीं सकूँगा और ना ही हर दर्द से बचा पाऊँगा। कुछ टूटना भी ज़िंदगी का हिस्सा है और कुछ अधूरे लम्हे भी कबूल करने पड़ते हैं। सारे कहते हैं कि मैं तुम्हें हर दिन हंसा नहीं सकूंगा और ना ही हर दर्द से बचा पाऊंगा। कुछ टूटना भी ज़िंदगी का हिस्सा है और कुछ अधूरे लम्हे भी कबूल करने पड़ते हैं।

0: मतलब साथ चलना है तो काफ़ी चीज़ें सहनी पड़ेंगी, सिर्फ खुशियां नहीं मिलेंगी, हंसा नहीं सकूंगा, ये तो तुम शुरू से डरा रहे हो। 051-111-000-101 पर कॉल शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी।
1: वालेकुम सलाम फजल भाई, क्या है?
0: मैं ठीक हूँ फजल भाई, क्या कहेंगे जल्दी से?
1: बस यार मैं ये कहना चाहूंगा जल्दी नहीं करो यार, थोड़ी थोड़ी राय दीजिए, मैं आपको अच्छी राय दूंगा। देखो बात सुनो
0: जी, करा
1: अपनी दौलत से कोई लेना देना नहीं होता, खुशी जो है ना वो इंसान के अंदर होती है।
0: ठीक हो गया, मतलब दौलत से नहीं खुशी,
1: दुनिया की दौलत ये होगी ना, दुनिया की दौलत।
0: हाँ हाँ,
1: अगर मेरे अंदर खुशी होगी तो मुझे मिलेगी, मेरे को ऐसे लोग मिलेंगे। मैं आपको ये लोगों ने अपने एक माइंड सेट बना दिए तो यार जिसके पास पैसा हो वो
0: सही कह रहे, बिल्कुल सही। बिल्कुल सही बात, सही कह रहे। हाँ हाँ, सही कह रहे, बिल्कुल अच्छा। देर तक नहीं सोते,
1: चलो
0: ठीक है ठीक है। क्या बात है फजल भाई, कोई हाल नहीं थोड़ा। चले बहुत शुक्रिया फजल भाई, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और छोटी बात किया करें, लेकिन आपने फिर भी वो जो आपने उधर लिखा था वो आपने ऑनर भी बोल दिया, तो बाज फिर भी नहीं आए। अस्सलाम वालेकुम जी।
2: एक जमाना वो था कि आप कहते थे आपका भाई शायरी के हवाले से बड़ा मासूम है, और आज हमारी पसंदीदा टॉपिक अब लेके आ गया।
0: सर देखिए, मैंने असल में लोग जो हैं मतलब मासूम है इसलिए कि मैं ना अल्फाज उस तरह अदा नहीं कर सकता हूँ, मुझे खुद बहुत अच्छी लगती है, मैं पढ़ता भी हूँ, लेकिन मैंने मौका आज लोगों को दिया है कि आप लोग आके ज़रूर टू लाइनर जो है, दो लाइनर जिसे कहते हैं, वन लाइनर वैसे होता है राइटिंग की दुनिया में, लेकिन आप ज़रूर सुनाएं जी अपना खूबसूरत सा जो भी आप सुनाना चाहते हैं।
2: शुक्रिया जी। सहर से कलाम रखते थे, कभी वो दिल थे कि जुल्फों में शाम रखते थे, तुम्हारे हाथ लगे हैं तो जो करो सो करो, वरना तुमसे तो हम सो गुलाम रखते थे।
0: अरे क्या बात, क्या
2: जाने कौन सी रुत में खो गए वो लोग जो अपने दिल में बहुत एहतराम रखते थे।
0: क्या बात, क्या
2: बात,
0: क्या बात, बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकअल्लाह, थैंक यू सो मच। दोस्तों इस तरह अब जो टाइम है हमारे पास, वक्त बहुत कम है और आपकी मैं लाइव कॉल शामिल करूंगा, जल्दी से आए और कलाम जो सुनाना चाहते हैं उसमें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, प्यारे भाई नाम बता दें अपना।
3: फहद अटक से बात कर रहा हूँ।
0: फहद भाई अटक से, फहद भाई क्या सुनाना चाहेंगे?
3: मैं सुनाना ये चाहता हूँ, अगर दौलत का ये मसला नहीं होता, जो लोग बीच में आ जाते हैं ना वो अपनी राय बताते हैं, फिर मसला खराब हो जाता है। जैसे कहते हैं ना, कदर कर देते हैं मोहब्बत का, लोग इतने खराब देखे हैं, आप होते तो खुदकुशी कर देते, हमने ऐसे ऐसे अजाब देखे।
0: अरे अल्लाह ताला आसानियां करे आपके लिए, ठीक है?
3: ओके,
0: ख्याल रखिए आप अपना जी, बहुत डेंजर कॉलें आनी शुरू हो गई हैं जी, अगर आप होते तो खुदकुशी कर लेते मोहब्बत के हवाले से, अल्लाह लियो किहड़े पासे डर पे तुसी सारे। अस्सलाम वालेकुम जी।

जो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं लेकिन थोड़ी बहुत है जो कि आप इस तरह की चीज़ें फेस कर सकते हैं, तो आप डिफरेंट तरीके से बिहेव करते हैं, आप मेंटली सुकून में रहते हैं, आप घर वालों के साथ अच्छा बिहेव करते हैं। एक चीज़ जो है वो हमें आहिस्ता आहिस्ता एजुकेशन से अपने दोस्त अहबाब में जब बैठें ये चीज़ ख़त्म करनी है कि जेब में पैसे, आपने अमूमन देखा होगा कुछ घरों में जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो ज़्यादातर ना पैसे की वजह से होती हैं, मतलब ज़रूरियात ना पूरी होने की वजह से होती हैं। तो वहाँ पे बहुत हद तक ख्वातीन जो हैं वो साथ देती हैं और बहुत हद तक जो है वो मर्द के साथ खड़ी रहती हैं। कुछ जगह पे इश्यूज होते हैं और वो हर किसी का एक ना डिफरेंट वेरी करता है कि आपको कहाँ किस तरह बिहेव करना है। एक चीज़ ये कि अगर आपकी ज़िंदगी में अल्लाह ने आपको सेहत दी है ना दोस्तों, तो ये अल्लाह की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। उसके बाद वालिदैन हयात हैं आपकी ज़िंदगी में, आपके अच्छे दोस्त हैं, एक अच्छा हमसफ़र है, एक बहुत अच्छा दोस्त है जो आपको समझ सकता है। कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिनके साथ से वक्त बिता के आप कुछ सुकून मिलता है, अच्छा फील होता है कि यार ठीक है। हर किसी की ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा दोस्त ज़रूर होता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके पास मौजूद हैं और दो वक्त की रोटी अल्लाह ताला आपको दे रहा है, तो आप बहुत लकी इंसान हैं। और इस सिक्के का तीसरा रुख ये है कि इन सारी चीज़ों के होने के बावजूद अगर आपका हमसफ़र जो है वो आपके साथ ठीक बिहेव नहीं करता या आपसे आपके मामलात ठीक नहीं हैं, तो सच्ची पूछें तो कुछ अच्छा नहीं लगता। तो ये एक ज़िंदगी है, इम्तिहान के लिए हम दुनिया में आए हैं। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। उम्मीद करता हूँ कि आप दोस्तों को आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मेरी अगर कोई भी बात आप में से किसी के भी दिल को बुरी लगी हो तो मैं ऑन एयर आप दोस्तों से माज़र चाहता हूँ। और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल रात 12 बजे तो आपसे मुलाकात होनी है, हम स्पोर्ट्स की ट्रांसमिशन में आपसे मुलाकात करेंगे। जाने से पहले एक बहुत प्यारी गज़ल मेरे दिल के बहुत करीब है और बारहा मैंने ये प्ले की है, उस्ताद आसिफ मेहदी की आवाज़ में है। ये अपने महबूब की तारीफ़ कर रहे हैं, तो ये आप मेरी जानिब से आप सब के महबूब के लिए ये तारीफ़ है। और ये सुनिएगा, आपको अच्छी लगेगी। जाने से पहले हमेशा की तरह एक दुआ की ज़िंदगी में कोशिश ये कीजिएगा कि आपकी वजह से किसी दूसरे शख्स का दिल ना दुखे, अपने साज़ा इकराम का हमेशा एहतराम करें, वालिदैन का ख्याल रखें, उनकी खिदमत करें, और एक दुआ अल्लाह ताला की ज़ात से ज़रूर किया करें कि रब ताला की ज़ात इस दुनिया में हम सब को अपनी ज़ात के सिवा किसी दूसरे का मोहताज ना करें। आमीन। और एक दुआ की स्पेशल मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों, दुआ किया करें कि अल्लाह ताला की ज़ात अपने घर की ज़ियारत मुझे करवाए। आमीन। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही, कल आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।

आवाज की दुनिया का दोस्त, मालूमातों तफरी का साथी, मेरा आपका हम सबका FM 101 रेडियो पाकिस्तान, कौम की आवाज।

आवाज की दुनिया का दोस्त, मालूमातों तफरीह का साथी, मेरा आपका हम सबका FM 101 रेडियो पाकिस्तान, कौम की आवाज।

आवाज की दुनिया का दोस्त, मालूमातों तफरी का साथी, मेरा आपका हम सबका FM 101 रेडियो पाकिस्तान, कौम की आवाज।

आवाज की दुनिया का दोस्त, मालूमातों तफरीह का साथी, मेरा आपका हम सबका FM 101 रेडियो पाकिस्तान, कौम की आवाज।

0: आवाज की दुनिया का दोस्त, मालूमातों तफरीह का साथी, मेरा आपका हम सबका FM 101 रेडियो पाकिस्तान कौम की आवाज।
1: और रियासत जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं उसमें जुल्म का, इस्तेबदाद का, जारहियत का, खौफ का और जंग किसी कैफियत का हर वक्त एक समा रहता है। और इसी तनाजुर में गोजरी गजल जो है वो मैंने लिखी है, वो आप सामीन की नजर करता हूँ। ते चाहूं तो मगर

0: क्या उन्होंने उसको नहीं देखा जो उनके आगे और पीछे है, यानी आसमान और जमीन? अगर हम चाहें तो उनको जमीन में धंसा दें या उन पर आसमान के टुकड़े गिरा दें, इसमें हर बंदे के लिए जो रुजू करने वाला है एक निशानी है।
1: वलकद